0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: जलवा जाना दरअसल दीदारे माशूक है, ये महज मजमूए हमदोनात नहीं बल्कि मेरे एक जाती सफर का नाम है, जो सफर है खुद आगाही का, एक ऐसा जाती तजर्बा कि जिसमें मैंने अपने आप को दोबारा दरियाफ्त किया। ये एल्बम पाकिस्तान और दुनिया भर के लोगों के लिए।
0: अभी बुधोपिया जिए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: 17,500 ahlkar security te mukarrar hunda. असास पोलिंग स्टेशन ते इज़ाफ़ी नफ़री मुकर कई वेंदी। रेंजर्स पुलिस ऐं ॿिया कानून लागू कंदड़ इदारा बि अलर्ट हूंदा।

पाकिस्तान जो अमन वाली कोशिशों रंग डेखारण लगी। ईरान अमरीका गालन में अहम अखबार आई। ईरान के मंजमंद असासन बाबत ब्रेक थ्रू थे इम्कान। वफाकी घरू वजीर मोहसन नकवी वजीर आजम शाहबाज शरीफ से मुलाकात बाद तेहरान पहुंची वो। घरू वजीर सिकंदर मोमनी से मुलाकात जरिए मूजिब मोहसन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो अहम पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर अरब मीडिया मूजिब मोहसन नकवी जो ईरान जो दौरो इंतहाई अहम है। अमरीका ईरान विच में मंजमंद असासन की बहाली वाले मामले से अगभराई थी है। घरू वजीर मोहसन नकवी ईरान ए अमरीका विच में थीदड़ मुआदे से मुशावरत कद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से गालन जो मुद्दों 60 डी रख चाहे तो। अमरीका ए ईरान जहा एक भेरों बीहर एक बे ते हमला। अमरीकी फौज जहा ईरान के इलाके किरोक ए बेट कशीम ते हमला। जवाब में ईरान की कोयत ए बहरीन में अमरीकी अड्डन के निशानो बढ़ाने की दावा। अमरीकी सैन का मूजिब अमरीकी फौज ईरान के 6 मिजाइल के रोको सतों हदफ तई पहुंचने में नाकाम रो। 4 ईरानी ड्रोन्स के बेआबना हुरमज में तबाह किया वो। अमरीकी बहरी बेड़े के निशानो बढ़ने वाले ईरानी दावा दुरुस्त न। पासदारान इनकलाब है तो अमरीकी हमलों के जवाब में कोयत ए बहरीन में अमरीकी अड्डन के निशानो बनाया वो। अमरीकी कार्रवाई जारी रही तो आबना हुरमज के मुकम्मल तौर से बंद किया वो। सऊदी अरब कोयत ए बहरीन पारा हमलों की मजम्मत हमला खुदमुख्तियारी की भंजकड़ी करार हमला रोकण ए आबना हुरमज खोलण जो मुतालबो। बहरीनी परदेही वजारत है तो मिजाइल्स ए ड्रोन जरिए अमुन कायम न कर सकजे। ईरान हमलों जो सिलसिलो बंद कर बहरीन के सब्र के कमजोरी न समझे वे। बहरीन पैं सलामती खुदमुख्तियारी दिफा ए आवाम की सलामती से को भी ठा न कन्द। कोयती परदेही वजारत है तो हमला मुल्की खुदमुख्तियारी खिलाफ आन दुरुस्त करार न तो डेई सकजे। कोयत दिफा तहत कदम करने जो हक रखे तो। सऊदी अरब बहरीन ए कोयत से हमला आलमी सलामती लाए खतरो। वफाकी हुकूमत की बजट से हुकूमती मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल। हुकूमती वफद अज सदर जरदारी से मुलाकात कंदो। मुल्क के तरक्याती बजट के भी हतमी शिकिल देने का इम्कान। जरियन मूजिब पीपुल्स पार्टी के वफद में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वडो वजीर मुराद अली शाह शहरी रहमान ए नवीद कमर शामिल हुंदा। हुकूमती वफद की सरबराही नायब वजीर आजम इसहाक डार कंदो। वफद में नाणे वारो वजीर मोहम्मद औरंगजेब ए बिया शामिल हुंदा। वफाकी हुकूमत पारा सरकारी मुलाजमन की पगार में 10-15 सैकड़ो ते वाद करण ते गौर। नाणे वाली वजारत पगार में वाद बाबत तजवीजू वजीर आजम के मोकले छद। जरियन जो चवण है तो नाणे वाले वजीर मोहम्मद औरंगजेब वजीर आजम शाहबाज शरीफ सरकारी मुलाजमन की पगार में 10-15 सैकड़ो ते वाद करण की तजवीज डिनी है। वजीर आजम शाहबाज शरीफ सरकारी मुलाजमन की पगार में वाद जो फैसलो इतिहादन सा मुशावरत बाद कंदो। कराची में तरक्याती कम जारी आन। शहर यूनिवर्सिटी रोड सबब डुखियन के मोह डो। यूनिवर्सिटी रोड के जुलाई के आखिर ते खोलो वो। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेहमद है तो कराची पोर्ट सिटी है मोटरवे की शुरूआत इतना का थियण घुर्जे। वफाक सदाई मोटरवेज के मामले से सिंध के घट तरजीह डिनी है। पूरे मुल्क की ट्रांसपोर्ट सिंध के बुनियादी ढांचे के नुकसान पहुंचाए थी। पूरे मुल्क में मोटरवेज ठही व्या पर सिंध में ना ठही सकिया। सिंध था गिरफ्तार खारजी दहशतगर्द उमरदीन उर्फ जज्बा जहा छिड़काईद इंकशाफ। खारजी दहशतगर्द उमरदीन उर्फ जज्बा वीडियो बयान में 2025 में पीए से जड़े भाती टीपी में शामिल थे। खारजी कमांडर्स से गड 60-70 तरबियत याफ्ता अफगानी। खारजिन के अफगानिस्तान में मौजूद कमांडर्स का माली मदद मिली है।

0: सिंध में ज़रई पाणी जी खोट 56% ते पहुची वई। कोटड़ी बैराज ते 56% ऐं गुडू बैराज ते 30% खोट बरकरार। सखर बैराज ते बि पाणी जी शदीद खोट। आबादगार सारिया लोबे जो पोखण लाइ परेशान। गुडू बैराज जो मथां वेकरो 75,000 ऐं हेठां वेकरो 54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज जो मथां वेकरो 50,000 ऐं हेठां वेकरो 18,500 क्यूसिक थी वियो। कोटड़ी बैराज वटि मथां वेकरो 11,000 क्यूसिक थी वियो। डाउन स्ट्रीम में पाणी छोड़ मुकमल तौर ते बंदि कयो वियो। सिंध में पाणीअ जो बुहरान संगीन थियण सबबि वणनि समेत ॿिया पोखियल फसल पाणी न मिलण सबबि सुकण लॻा। पंजाब जी बि होड बरकरार। तकरारी फ्लड कैनाल ज़रिए सिंधू दरिया मां पाणी खणत जारी। कोटड़ी डाउन स्ट्रीम में पाणी छोड़ बंदि थियण बाद दरिया में वारी उॾामण लॻी। कोटड़ी बैराज मां निकरंदड़ वाहन में बि पाणी घटिजी वियो। पाणी बंदि थियण बाद इंसान तोड़े जानवर पीअण जे पाणी लाइ परेशान। छठो सजावल बदीन टंड मोहम्मद ख़ान में सूरतहाल संगीन। हैदराबाद डिवीज़न जे ॿिन्ही ज़िलनि ऐं मीरपुर ख़ासि डिवीज़न में बि पाणी बुहरान संगीन थी वियो। पाणी न मिलण सबबि पोखियल फसल बि सुकण लॻा। मीरपुर ख़ासि शहीद बेनज़ीराबाद सखर ऐं लाड़काणी डिवीज़न में बि आबादगार पाणीअ लाइ परेशान। फैज़गंज चूहड़ जमाली ऐं ॿियनि शहरनि में बि आबादगारनि पारां एहतजाज कया विया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
5: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिदक़न व अदला, और तेरे रब की बात सच्चाई और अदल वाली पूरी है, कामिल है। यानी तेरे रब की बात में सच्चाई भी है, अदल भी है। तेरे रब का हर हुक्म सच्चा है, यानी तेरे रब की बातें मुकम्मल है सच्चाई के एतबार से और अदल के एतबार से। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता उसको कोई ऐसा हुक्म देकर। ला मुबद्दिल लिकलिमाते, उसके कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं, यानी किसी को इख्तियार नहीं के बदले। अल्लाह के हुक्म को कोई तब्दील नहीं कर सकता। वहुवस समीउल अलीम, और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो आप किसी इंसान को ये हक न दें कि वो उस हुक्म को बदल दे, या आप उसकी मर्जी पे चल के अल्लाह के हुक्म को ना बदलें, अल्लाह के फैसले को तब्दील ना करें। अल्लाह का फैसला, अल्लाह का हुक्म बदलने का इख्तियार किसी के पास नहीं। किसी को ये राइट नहीं पहुंचता कि अल्लाह की बात के मुकाबले में कोई दूसरी बात लाकर आपसे करवाए। लेकिन हमने क्या किया, जैसे इकबाल कहता है ना, खुद नहीं बदलते कुरान को बदल देते हैं। हम क्या चाहते हैं, कुरान में कोई तब्दीली हो जाए, हमको ना बदलना पड़े। फिर एक से पूछते दूसरे, अच्छा इसका कोई और मतलब भी निकलता है, ये और मतलब कौन सा होता है? यानी कुरान की किसी आयत पे जब हमें अमल करना मुश्किल लगता है तो फिर हम दूसरों से जाके पूछते, अच्छा इसका वाकई सिर्फ यही मतलब है या कोई और भी है? वो और हम कौन सा चाहते हैं, जो हमारी मर्जी का निकले, ताकि हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकें, अपने दिल की मर्जी पे चल सकें। और जब और तलाश करेंगे तो वही आएगा, अब तक ही हकमन, अल्लाह के सिवा कोई और चाहूं। वह समीउल अलीम, और वो सुनने वाला जानने वाला है। एक और जबरदस्त आयत है, वह इन तुते, और अगर तुमने इतात की, अगर तुमने बात मानी, अक्सर मन फिल अर्दी, जमीन पर रहने वालों की अक्सरियत की, मेजोरिटी की, युदिल्लू कान सबीलिल्लाह, ये तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। कितनी खरी बात है, सारी बातों के ऊपर मोहर है जो कुछ पीछे कहा गया। अगर तुम जमीन में रहने वाली अक्सरियत की बातें मानने लगोगे तो वो तुमको अल्लाह के रास्ते से हटा ले जाएंगे। پھر تم اللہ کے رستے پہ نہیں چل سکتے، پھر تم صراط مستقیم کو فالو نہیں کر سکو گے۔

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: इट्स 10 एएम। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट। भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN
5: पंहिंजे वोट जो आइनी हक इस्तेमाल कंदा। आई जी गिलगित बल्तिस्तान जो चवण आहे त सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया आहिनि। 17,500 अहलकार सिक्योरिटी ते मुक़रर हूंदा। असास पोलिंग स्टेशन ते इज़ाफ़ी नफ़री मुक़रर कई वेंदी। रेंजर्स, पुलिस ऐं ॿिया कानून लागू कंदड़ इदारा अलर्ट हूंदा। पाकिस्तान जी कोशिशन सां ईरान अमरीका गारन में अहम अग भराई। ईरान जे मंजमद असासन बाबत ब्रेक थ्रू थियण जा इम्कान। वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां मुलाक़ात बाद तेहरान पहुची पियो। घरू वज़ीर मुलाक़ात जंगबंदी मुआहिदे ऐं खिते सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। मोहसिन नकवी चयो आहे त सुप्रीम लीडर मुश्तफ़ा खमदाई लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो ख़ुसूसी ख़त ऐं वज़ीर आज़म जो पैगाम खणी आयो आहियां। ज़रियनि मूजिब सदर ट्रम्प ईरान सां ॻाल्हियुनि जो मुदो 60 ॾींहं रखण चाहे थो। मंझंदि असासन जी बहाली ते बि ॻाल्हियूं थींदियूं।

राजदेव पानी की शदीद खोट आबादगार सारेलो बेजो पोखण लाइ परेशान गुडू बिराज जो मथा विकरो 75,000 हेठा विकरो 54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड सखर बिराज जो मथा विकरो 50,000 हेठा 18,500 क्यूसिक थी वो कोटली बैराज वट मथा विकरो 11,000 क्यूसिक थी वो डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ मुकम्मल तौर से बंद कर वो सिंध में पानी जो बहरान संगीन थर सबब वणन समेत बया पोखियल फसल पानी न मिलने सबब सुकन लगा पंजाब जी भी होड़ बरकरार तकरारी फ्लड कैनाल जरिए सिंध पानी खणप जारी कोटली डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ बंद थे बाद दरिया में वारी उडामन लगी कोटली बिराजमान निकरंदड़ वाहन में पानी घटी वो डाउन स्ट्रीम में पानी बंद थे बाद इंसान तोड़े जानवर पीण के पानी लाइ परेशान छठो सिजावत बदीन टंडो मोमिन खान में सूरतहाल संगीन हैदराबाद डिवीजन के बिन्हीं जिलन आए मीरपुर खास डिवीजन में पानी बहरान संगीन थी वो पानी न मिलने सबब पोखियल फसल भी सुकन लगा मीरपुर खास शहीद बिन नजीराबाद सखर ए लाड़कानी डिवीजन में भी आबादगार पानी लाइन परेशान फैजगंज चोट जमाली बिन शहर में आबादगार एहतजाज हुकूमत का जरी पानी की खोट खत्म करने जो मुतालबो सिविल अस्पताल कोयटा में तेजाब हारे जख्मी कर लेडी डॉक्टर इलाज लाय कराची मुंतकल डॉक्टर महानूर नासिर के एयर एम्बुलेंस वसीले कराची मुंतकल किया वो डॉक्टर्स जो चवण है तो डॉक्टर महानूर नासिर होश में आए इन पान पंजे मेडिकल स्टी फराम कई सन हालत खतरे का बाहर आए तेजाब सबक सन 12-15 सैकड़ो जिसम मुतासर थो कोयटा पुलिस पारा वाकई में मुलिस जवाबदार के मुकाबले में मारण की दावा पुलिस जो चवण है तो जवाबदार गिरफ्तारी की कोशिश दौरान फायरिंग की डेवट दौरान गोली लगन सबब मारजी पो खानपुर मेहर में नारी के तेजाब हारे जख्मी कंदड़ जवाबदार मुबैना मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार जवाबदार मियादाद मेहर के पुलिस नरोबाग वट मुकाबले बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार करे वरतो जवाबदार नारी शर्मा मेहर मथा मुबैना तौर तेजाब हारे जख्मी करे छो हो वाके जो केस दाखिल

0: मौसमियात खाते सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों ला हीट व्यू अलर्ट जारी कर छो। सिंध के कुछ जिलों में मौसम अज का 12 जून तक गर्म हों। मौसमियात खाते चवाए सखर, शिकारपुर, कंबर, शिदादकोट, जगमबाद, दाड़कानो, दादू, नवाबशाह, घोटकी, खैरपुर, नुसरफरोज के पारो मामूल का 6 सेंटीग्रेड तक हों। मुख्तलिफ इलाकों में रात के वक्त भी गर्मी बरकरार रही। शहरी गर्मी में गैर जरूरी तौर बाहर निकरन पाकिस्तान के शहर मूसाखेल में खानगी टीवी चैनल जो सहाफी कतल हथियार बंदन दुकान से बैठल सहाफी लाला सरफील के 6 गोलियों हणी कतल करने बाद फरार थी गया। सहाफी जो मर्ज अस्पताल मुंतकिल। पुलिस जो चवण है तो वाकई में मर्द जवाबदार के जल्द गिरफ्तार किया वेंदो। दरिया खान मरी वेझो नौजवान गलो कपे बेदर्दी से कतल सोट मरिंग गोठ उस्मान खासकिली में जवाबदार दिलावर खासकिली के रस्ते में पकड़े कमन के फसल में खड़ी वही गलो कपे छो। नौजवान तड़पी तड़पी फौत जवाबदार छुरा हणी मकसूल के सोर गुलाम मुस्तफा के मरलिंग कर छो। मकसूल के भाव की अज शादी रिथल हुई खुश मातम में तब्दील थी वयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटरिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
5: GFM 91.6।
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM
3: सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GFM की आवाज,
3: GFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।
1: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
3: Hemmé Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Hemmé Diamond Glow Bleach Cream,
4: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: अपना शहर, अपना घर, मठियारी और मठियारी की आवाज़,
1: GFM 91.6।

0: मेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी
2: जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ डिजिटल पर 88 नेटवर्क।

0: बैंक हबीब का हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी एटी वर्क प्लस अकाउंट
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी कुरान रोजानो सुबह 5 मिनट ते GFM 88

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 11 AM. This time check is brought to you by
2: Bankal Habita, भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: गर्म हूँ तो मौसमियात खाते चैकारपुर कम्बर शिदादकोट से कम्बाद लाड़कानो दादू नवाबशाह घोट की खैरपुर फिरोज जो पारो मामूल खां छह को हों मुख्तु इलाकों में रात के वक्त भी गर्मी बरकरार रही। शहरी गर्मी में गैर जरूरी तौर बाहर न निकरन। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी आजाद कश्मीर की सूरतहाल से पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर जो इजलास अज शाम तलब करे वरतो। जरियन मौजूद पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी सरबराह में आजाद कश्मीर की सूरतहाल से इजलास अज इस्लामाबाद में थी। गिलगित बल्तिस्तान में कैंजी हुकूमत हूंदी 24 तकन ते चूंड लाइ पोलिंग जो अमल जारी। इलेक्शन में 403 उम्मीदवार हिस्सो वठी रहा आहिनि। पीपी जा 23, नून लीग जा 22, इस्तकाम पाकिस्तान पार्टीअ जा 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जा 11 ऐं JUI जा 8 ऐं 266 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में लथल। पीपी ऐं नून लीग में चोटी जे मुक़ाबले जा इम्कान। पोलिंग सुबुह 8 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं बिना वक़्फ़े ते जारी रहंदी। 9,58,480 वोटर पंहिंजे वोट जो आइनी हक़ इस्तेमाल कंदा। IG गिलगित बल्तिस्तान जो चवण आहे त सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया। चार सिक्योरिटी ते मुक़रर हूंदा। हसास पोलिंग स्टेशन ते इज़ाफ़ी नफ़री रेंजर्स कानून लागू कंदड़ इदारा अलर्ट हूंदा। पाकिस्तान सां भराई ईरान जे मंझंदि असासन बाबति ब्रेक थ्रू थियण जा इम्कान। वफ़ाक़ी गरू शहबाज़ शरीफ सां मुलाकात बाद तहरान पहुची वई। गरू वज़ीर सिकंदर मोमनी सां मुलाकात, जंगबंदी मुआहिदे हाल ते ॻाल्हियूं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमदाई लाइ फील्ड मार्शल आसम मुनीर

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: काश हमारे पास वैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
2: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: कहती अपनी मैं मनु होती तो सब कुछ सही होता।
1: देखिए सिर्फ जियो पर।
2: आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

यार गर्मी तो बढ़ती जा रही है, गर्मी खत्म ही नहीं हो रही, गर्मी तो बहुत बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चलें जी, यहाँ पर हमने एक कर दिया सॉन्ग प्ले और इस सॉन्ग को सुनते हैं। फैजा अली की आवाज में ये सॉन्ग है, फैजा अली की आवाज में अगर कोई हम सॉन्ग ना प्ले करें तो हमारा सुबह का आगाज समझो होता ही नहीं है, लेकिन जाने

का हाल क्या होगा। आज इस सॉन्ग ने तो कमाल कर दिया और इतना अच्छा सॉन्ग है ये, और इसलिए मैंने वो प्ले करके आपको सुनाया था। तो अभी तो मेरे चोटों में भी चोट लग के और तकलीफ हो रही है, क्योंकि एक तो गर्मी है, गर्मी में नील पड़ गए हाथों में, तो बहुत दर्द कर रहे हैं, बहुत दर्द कर रहे हैं। आप लोग इसका हल बताएं ये कैसे सही होंगे। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर कर दिया है सॉन्ग प्ले। जो जो ड्राइव पर है, जो जो ड्राइव पर सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, सुनते हैं सारे।

0: तो जी सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग एक सॉन्ग जो कि फैजल की आवाज में था, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि कोई भी नई सॉन्ग होता है तो मैं हमेशा कभी भी अकेले नहीं सुनती, हमेशा आप लोगों के साथ सुनती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हो रहे हैं 11:45। तो जी यहाँ पर टाइम होता है, हम लोग छोटे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, वापस आएंगे, वापस आके करेंगे बाकी की बात। रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाइएगा मत।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज
3: GFM 91.6 11:45 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
4: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
6: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अब्दुल्ला साहब, आप जो लिखना चाह रहे थे मुझे नहीं समझ आया कि आप क्या लिखना चाह रहे थे और क्या लिखा है आपने, इस बात का क्या मतलब है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे समझ आया मैंने आपको आपके फ्रेंड के नाम जो है रीड आउट करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे साथ और कौन मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद तो बहुत सारे लोग हैं और उन बहुत सारे लोग तो हैं ही मौजूद। तो देखते हैं ऐसे में समय कौन करते हैं, ऐसे में समय ज्वाइन करते हैं सक्कर के लिए मसूर अहमद कहते हैं कि और जिस तरह जी सवाल का जवाब है। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बिल्कुल ठीक सवाल का जवाब उन्होंने दिया है राइट। हो तो अपने पसंद का कोई भी सॉन्ग नाम कर देना। बिल्कुल जी, मैं अपने पसंद का कोई भी सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट करूंगी कुछ ही देर में। अपने पसंद का सॉन्ग आपके लिए प्ले करते हैं। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है और जवाब मैं बिल्कुल लास्ट में सबको वैसे भी बताती जाऊंगी, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बताती हूँ जिसका अगर सॉन्ग प्ले करती जाती हूँ तो फिर उससे ये होता है कि यार उसको पता चल जाता है कि उसका जवाब बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरीके से मैं बता दूंगी तो जिसका नहीं पता होता वो अपना दिमाग चलाना जरूरी नहीं समझता, तो इसलिए मैं नहीं रिपीट करती। और चीज के अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सक्कर के लिए कहते हैं कि वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि सना आप अपने हाथों को ठंडे पानी से बार बार धो लें बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब मैं हाथों को कैसे बार बार धोऊं, मेरे हाथों में नील हो गए हैं वो चोट लगने से जो होते हैं ना ब्लू ब्लू वो हो गए हैं और इतना दर्द कर रहे हैं कि मैं इसको कैसे धोऊं और इतना दर्द हो रहा है मेरे हाथों में बहुत ज्यादा। थैंक यू फॉर द आपकी एडवाइस जो आपने मुझे दी है, मैं इम्प्लीमेंट करते हुए सोचूंगी इस बारे में। जब भी कोई इम्प्लीमेंट मैंने किया तो मैंने कहा एडवाइस आप लोगों से लूं।

0: एक्सप्रेस पी एम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: अल हबीब करंट पैस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: एक्सप्रेस पी एम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: अल हबीब करंट पैस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकन ला हीट व्यू अलर्ट जारी कर छो। सिंध के कुछ जिलों में मौसम अज का 12 जून तक गर्म रही। मौसम खाते चाहिए सखर शिकारपुर कंबर शहजादकोट जकमबाद लाड़कानो दादू नवाबशाह घोटकी खैरपुर नौशरो फिरोज जो पारो मामूल 6 सेंटीग्रेड तक हों। मुख्तलिफ इलाकन में रात वक्त भी गर्मी बरकरार रही। शहरी गर्मी में गैर जरूरी तौर बाहर न निकरन। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आजाद कश्मीर सूरतहाल पीपल्स पार्टी आजाद

कैबिनेट जो इजलास अॼु शाम तलब करे वरितो। ज़रियनि मूजिब पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जी सरबराही में आज़ाद कश्मीर सूरतहाल ते इजलास अॼु इस्लामाबाद में थी रहियो आहे। पाकिस्तान जी कोशिश सां ईरान अमरीका गारन में मकबराई। ईरान जे मंझंदि शासन बाबति जो शुरू थियण जो इम्कान। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां मुलाक़ात। बाद तहरान पहुची पियो। घरू वज़ीर सिकंदर मोमनी सां मुलाक़ात। जंगबंदी मुआदे ऐं खिते सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। मोहसिन नक़वी चयो आहे त सुप्रीम लीडर मुजतबा खमनाई लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो ख़सूसी ख़त ऐं वज़ीर आज़म जो पैगाम खणी आयो आहियां। ज़रियनि मुजिबि सदर ट्रम्प ईरान सां ॻाल्हियुनि जो मुदो 60 ॾींहं रखणु चाहे थो। मंजमद असासन जी बहाली ते ॿ ॻाल्हियूं थींदियूं। सिंध में ज़रई पाणी जी खोड 56% ताईं पहुची वई। कोटड़ी बैराज ते 56% गुरू बैराज ते खोड बरक़रार। तखर बैराज ते बि पाणी जी शदीद खोड। आबादगार सारेलू वेझो पोखण लाइ परेशान। गुडू बैराज जो मथां विकिरो 75,000 ऐं हेठां विकिरो 54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बिराज जो मथां विकिरो 50,000 ऐं हेठां 18,500 क्यूसिक थी वियो। खोटड़ी बिराज वटि मथां विकिरो 11,000 क्यूसिक थी वियो। डाउन स्ट्रीम में पाणी छोड़ मुकमल तौर ते बंदि कयो वियो।

0: मीरपुर बटोरों में जसकम पारा गंजबहर कैनाल में पानी खोड़ खिलाफ एहतजाजी रैली अगवाणनि चयो त लखे एकड़ जमीन आबाद कंदड़ गंजबहर कैनाल में पानी शदीद खोड़ पैदा थी वई आहे। पानी न हुअण सबब आबादगरनि जो लखे रुपयनि जो पोखियल वेचारो सड़ी रहियो आहे। पाणी फराहम करे माशी बदहाली खां बचायो वञे। कैनकोट में पब्लिक हेल्थ खाते के कचन मुलाजमन की मुतालबन की मंता लाए एहतजाजी मुजाहरो। मुलाजमन चयो त 8 साल गुजरण बावजूद पको ना कर सरकार तरफा ऐलानियल पगार भी न पई मिले। महंगाई सबब जियापो दुखियो बणजी वियो आहे। बिना देर
1: हिते कंहिंजी बि बालादस्ती सदमी ने सिंध ते अरहूननि तरफ़ूननि मोकलनि खे क़बूल न कयो। हे पिदा छा पिद जो शोरबो पिदनि खे सिंध जो सुपर पावर थियण जी सिंधी आवाज़।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क।
6: उन्होंने अपने पसंद का सॉन्ग नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी का कोई भी सॉन्ग चला दें तो इस अच्छी और क्या बात है। तो जी, मैं यहाँ पर अपने पसंद का कोई भी एक सॉन्ग प्ले करती हूँ, डेडिकेट करती हूँ आप दोनों को, और सुनेंगे ये सॉन्ग जो मैं प्ले करने लगी हूँ। डेडिकेट है मसरूर अहमद और इकबाल अशारी को, असगर खोसो का ये सॉन्ग है। तो जी, कर दिया है मैंने प्ले, और देखते हैं ये कौन सा सॉन्ग है, और सुनेंगे साथ में सॉन्ग को भी।

0: अच्छा लगा, वेलकम। और जी जरूर, आप लोग मेरे साथ मौजूद रहते हैं, आप मुझे सवाल का जवाब देते हैं, टाइमली ज्वाइन करते हैं। आपकी आपकी इससे बड़ी मेरे लिए और मेरे लिए इससे बड़ी आपके लिए कोई और खुशी नहीं है कि आप लोग मुझे टाइमली ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। तो आपने जवाब दिया और मैंने आपसे कहा था जो राइट आंसर देगा मैं उसको जो है सही उसका सॉन्ग प्ले करूंगी, तो वो मैंने किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वेलकम, और हमेशा मोस्ट वेलकम है कि आप आए और मेरे राइट आंसर दिया करें मुझे मेरे सवाल का। और किसी को ये बोल रहे थे लेकिन कोई नहीं, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नींद में सो रहे होंगे, किसी को नहीं पता होगा कि आकर चली भी गई है, नहीं पता होगा किसी को। तो भाई उठे, संडे का दिन है, बात बात करें, बात करें और संडे का दिन की एक्टिविटीज को शेयर करें कि आप लोग क्या करेंगे, अभी कहाँ जाना है, आपने कौन सा सॉन्ग सुना है। तो मजे मजे का सॉन्ग जरूर सुना करें मेरे साथ। तो इसमें कुछ हो तो नहीं जाएगा ना आपका ना मेरा। टाइम होता है हमारे पास एक छोटे से शॉक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाते, शॉक कमर्शियल की तरफ जाने की गाड़ी।
1: जिस धरती से जुड़ा कर लाल शहबाज,
2: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो, हर दिन का शो।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज।
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
1: ये अपना आवाज
2: सिंध के माथे का झूमर
3: जी एफ एम 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।
5: कमेंट किसका मुझे आएगा? कोई भी अच्छा सा सॉन्ग का नाम देखते हैं, जो पहले मुझे भेज देगा वो सॉन्ग हम करेंगे लास्ट में प्ले।

अच्छा जी, तो जी आपको पता है कि यार पूरा पूरा हफ्ता हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं सिर्फ एक इतवार के दिन आने के लिए, और एक इतवार का दिन आता है, सिर्फ दो घंटा हमारी बात होती है और यूं ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही पूरा दिन लेकिन हमारा बहुत अच्छा गुजरता है, सुबह 11 से तो फिर 1 बजे तक रहता है, जैसे कि मेरा आपके साथ, जिससे मुझे अभी ज्वाइन किया और टाइम भी ज्वाइन नहीं कर पाते, तो काइंडली आप लोग मुझे टाइम भी ज्वाइन किया करें सुबह 11 से तो फिर 1 बजे तक, जहां तक तो मेरी आवाज आ रही, जो गाड़ी चला रहा हो वो भी, और जो घर में बैठ के एफएम सुन रहा है वो भी। तो आपने SKR लिख के टाइप करना होता है अपने विथ योर सिटी नेम, प्यार से सिटी का नाम के साथ आपने मुझे SMS करना होता है, अपने नाम के साथ मैसेज करना होता है, और कोई भी पसंदीदा सॉन्ग के साथ मैसेज करना होता है जो मैं सवाल करती हूँ उस जवाब के साथ। तो क्योंकि अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपका जवाब ठीक होगा तो आपको पता है कि मैं वो सॉन्ग प्ले कर देती हूं, तो आपको पता चल जाता है। तो ऐसे ही है जी, मेरा शो आपके साथ ऐसे ही होता है मजे मजे की बातों के साथ, कोई मैं आपके साथ कोई सख्ती से पेश नहीं आती, आपको पसंदीदा सॉन्ग सुनाने को मिल रहे होते हैं आपको। तो ऐसे अभी देखते हैं, मैंने आपको बोला है जो जो मुझसे एक कोई अच्छा सॉन्ग सुनना चाहता है जो सबसे पहले मुझे कमेंट कर देता है, जिसका भी मेरे पास कमेंट रिसीव हो जाएगा सबसे पहले तो मैं उसका सॉन्ग प्ले करूंगी यहाँ पर लास्ट में जाने से पहले। तो आपके पास है 2-3 मिनट के अंदर, अभी देखते हैं कौन मुझे सबसे पहले जवाब दे देगा। जो भी मुझे सबसे पहले जवाब देता है तो उसके पसंद का सॉन्ग हम कर देंगे प्ले।

तो यहाँ पर देखते हैं यार, अभी तक हमारे साथ अभी तक किसी ने कोई भी सॉन्ग शेयर नहीं किया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी भी मैं जो है अपने पसंद का सॉन्ग चलाऊंगी। अच्छा जी, ओके, हमारे साथ एक और हैं जो सॉन्ग का नाम बताया, मसूर अहमद मसूद मौजूद हैं, कहते हैं तेरे बिन ड्रामे का ओएसटी सॉन्ग प्ले करते हैं। ओके जी, मैं ड्रामे का ओएसटी हम सॉन्ग प्ले करते हैं, लेकिन अभी एक ट्रेलर सुनते हैं। पहले मेरे पसंद के एक सॉन्ग मैंने कर दिया है प्ले, सुनते हैं वो। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा पहले चलो कोई नहीं आता तो मैं प्ले कर देती हूँ, लेकिन अभी जो है तेरे बिन का ओएसटी सॉन्ग प्ले करना है तो कर लेते हैं वाला सॉन्ग भी प्ले।

जी मैंने कर दिया है उनका ये पसंदीदा सॉन्ग प्ले तेरे बिन, और उस चीज सॉन्ग हमने प्ले कर दिया है, वो लास्ट में प्ले करते जाऊंगी। तो जी यहाँ पर आपको पता है कि जी हमारे पास टाइम होता है यहाँ पर बिल्कुल ही 5 मिनट और 5 मिनट 6 मिनट बचे हैं, 6 मिनट के अंदर करनी है हमने वाइंड अप और मिलेंगे फिर हम एक नए सेगमेंट में नए एक सवाल।

अगले इतवार को रहेगा मेरे साथ और जाएगा नहीं कहीं। तो यहाँ पर हम लोग सॉन्ग प्ले कर दिया है, सॉन्ग प्ले कर दिया है हमने तेरे बिना अच्छी सॉन्ग है। क्या बात है, बेवफाओं से भी तो प्यार होता है। जी बिल्कुल, प्यार ही बेवफा से होता है। आपको क्या पता, जो बेवफा होता है वही दिल को पसंद आ रहा होता है, लेकिन जब बाद में धोखा मिलता है तो पता चलता है यार ये तो बंदा बेवफा था, होता वो पहले से नजर हमें बाद में आता है। जब हम दिल को तकलीफ पहुंचा चुके होते हैं तब हमें ये चीज समझ आ रही होती है। जी मैंने यहाँ पर सॉन्ग कर दिया, पहले तो जी मिलेंगे अगले इतवार को। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में हमेशा आप लोग रहेंगे मौजूद। और तेरे बिन यूनिवर्सिटी को सॉन्ग कर दिया है मैंने प्ले, और सुनते हैं सॉन्ग का भी मिलकर सब। रखिएगा अपना ख्याल, मिलेंगे अल्लाह हाफिज अगले इतवार को एक नए सवाल के साथ। दुआ में याद रखिएगा, मेरी भी दुआ में आप लोग हमेशा मौजूद है।

तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, पास तो अल्लाह है। सिंधु दंदड़ सभी समात उनकी मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। दुआओं के समंदर चाहते भी बारिश सलासल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जागता समी से आसमान तक जिंदगी से मोल सांस तार तक से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के सामने सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जनाब आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारे सकरण बहरापुर माथली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से।

टेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जनाब अगर हम यहाँ पर जिक्र करें व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, तो भाई गलत बात नहीं होगी क्योंकि आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप जानेंगे इस प्रोग्राम में कि किस तरीके कार से आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी खूबसूरती को बढ़ाइए, खूबसूरती को बढ़ाते बढ़ाते खूबसूरत भी हो जाइए, ठीक है। ओके जी, तो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जितनी भी समाते हो, तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत हो समात हो अचाहत होगा, बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं, सो लिसनर्स प्रेजेंट द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डी जे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं, और जरा अपने हाल चाल भी बताइए। सो डियर लिसनर्स, अंत की हालत कैसे ही आपकी हालत, उम्मीद है शदीद इनके बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपरकूल मूड के साथ बिल्कुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे। और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ पूरी पूरी 3 बजे तक का, तो आप हमारे साथ मौजूद रहिए, हम आपके साथ मौजूद रहते हैं बहुत ज्यादा बातों के साथ, बहुत ज्यादा फन के साथ, और बहुत ज्यादा खूबसूरती के राजों के साथ साथ मेरी जान। तो चलिए जी, बिल्कुल यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालें, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान। तो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं, तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 446 उल्की स्माइल लाने का काम करती भैया आपकी सिद्रा, बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं। और यहाँ पर ऐसा करते ही आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम किया जाएगा एक बहुत ब्यूटीफुल सी नाद के साथ जो कि आतिफ असलम की आवाज में होने वाली है। तो नाद सुनते हैं, इसके बाद ना हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, तावले इस्तेमाल करते जाइए और खूबसूरत होते जाइए।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डेज ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे बारे जे बेहतरीन करियर आई रोशन मुस्तकबिल जे लाए सखर जो मशहूर आई मनियल इधारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारा नर्सिंग आई फिजियोथेरेपी जे शोबन में नए सेशन लाए दाखिला जो शानदार ऐलान। हाने पैंजे बारन के बनायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM आई 5 साल DPD जने ते 2 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHV CMW ICNA ऐं खास गाल मुस्तहक शागिर्दन लाए स्कॉलरशिप्स पिण मौजूद आहिन जने ते 2 सालन जे कोर्सेज में दाखिला बिल्कुल फ्री आहे। सहूलतूं ऐं मान्यता असां वटि मौजूद आहे स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस, AC क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल ऐं पिक एंड ड्रॉप जी सहूलत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंजूर थियल ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां मुकमल तस्लीम थियल आहे। दाख़िला महदूद आहिनि, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। एड्रेस: सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, Sector 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। फोन नंबर्स 07156356429 03008311207।
2: यार मछा क्या किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नहीं थी।
3: छो भला छा थो तोखे, साफ साफ बुधा मसलो छाए।
2: यार एक मसलो हुजे त बुधाया, मुंझी ते मसलन जी कतार लगल है, न भुख सही लगे थी, जे कुछ भी खावा थो तो हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पेर सुन थी वन था, सजो डी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही ना।
3: यार तुझा घणा न, बस एक ही मसलो आ।
2: एक इहो किए?
3: हाँ तुझो मैदो खराब आ, छा तो न बुधो आ, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न हुंदो त भुख भी न लगंदी, न हाजमो थींदो न ताकत मिलंदी।
2: तो पो मां छा कयां?
3: सोलो हल आहे, इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स, हे कुदरती जुज़न मां तैयार कयल कोर्स तुझे जिस्म जो हिस्सो बणजी तुझे मैदे के बिल्कुल ताज़ो ऐं मजबूत करे छॾींदो, भुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हजम थींदई, पेट फूकजण खत्म, सुस्ती खत्म, जिस्म में ताकत ईंदई।
2: वाह यार वाह जी, गाल बुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
3: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं अल नूर दवाखाना रोड़ी, ऐं राब्ते जे लाइ नंबर भी अथई 0305-58-00-616। शिफाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त।
1: खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बेकार
4: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
1: DHMS सिंध,
4: RHMP इस्लामाबाद,
1: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
4: माहिरे अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
1: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
4: कमर दर्द,
1: अर्कुन निसा,
4: जोड़ों का दर्द,
1: हेपाटाइटिस

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6
1: जरूर भाई, जरा आप याद रखिए ये जो मेरी बातें हैं ना, ये गौर से सुना करें ताकि कभी जब आप लोगों से पूछा जाए तो आप इजीली बता सकें। तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन तमाम चीजों की आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। ओके जनाब, तो सबसे पहले हम सर यहाँ पर बात करेंगे व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम की, और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए मौजूद है। और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है ये जनाब एक नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास व्हाइट एश ब्यूटी सोप मौजूद है, यानी कि व्हाइट एश जो साबुन भी तमाम वट मौजूद है, उनखा अलावा व्हाइट एश जो फेस वॉश भी तमाम वट मौजूद है। अगर तुम साबुन लगाईंदा तो तुम साबुन लगाईंदा, अगर तुम फेस वॉश लगाईंदा तो तुम फेस वॉश लगाईंदा, ठीक है। उनखा अलावा तुम वट मौजूद है व्हाइट एश लवली क्रीम। व्हाइट एश लवली क्रीम हाँ केड़ी बलाए तो तांके बुधाईंदा हलो, तो व्हाइट एश लवली क्रीम जिकाए ये जनाब एक फेयरनेस क्रीम आहे। फेयरनेस क्रीम उहा क्रीम हुंदी आहे जिंखे तव्हां हर उमर में लगाए सघो था, ऐं ही यानी के मेकअप जी जगह ते इस्तेमाल कई वेंदी आहे। उहा क्रीम जिका भई तव्हांजी स्किन के फ्रेश बणाईंदी आहे, तव्हांखे ग्लो ॾींदी आहे, तव्हांखे मतलब नो मेकअप लुक ॾींदी आहे। अगरि तव्हां मेकअप नथा इस्तेमाल करणु चाहियो पर तव्हांजी ख़ूबसूरती जेका उहा हमेशह चमकंदी रहे, तव्हां व्हाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था। व्हाइट एश लवली क्रीम जेका ही सफ़ा एॾो परफेक्ट जेको आहे न ही प्रोडक्ट अथव, मतलब मुझी तो फेवरेट आ है। अगर तुम इस्तेमाल कयो पया तो मुझे बुधाए जो तुम के किए लगी, जे मानो इस्तेमाल करन चाहन था उहे भी मुझे बुधाएं, ठीक है। उनका अलावा डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्नी ट्यूब आ है, बिल्कुल जी डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्नी ट्यूब आ जेको उन मानो जे लाया जेके दाणन की वजह से काफी परेशान आ है। अगर तुम्हारे चेहरे ते भी दाणा आन तुम्हें दाणन परेशान कर छो है, एक्नी तुम पीछो न था छन, तो डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्नी ट्यूब इस्तेमाल कर सो था। हि ट्यूब तुम्हारे स्किन तेके दाणा आन उन्हें खत्म कर दाणन से गुड़ तुम चेहरे से अगर निशानात आन एक्नी जहा निशान आन सड़न जो निशान आए धक् जो निशान आए अड़े किस्म जहा निशानात भी रिमूव कर छो, यकीन माने आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक मजे की बात है कि इसको आप अगर किसी भी अपनी ब्यूटी क्रीम के अंदर एड करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लगाने के तरीकेकार भी बहुत ज्यादा आसान है, आप लोगों को मैं जरा बताती चलूं। अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ये नाइट क्रीम है, तो आप रात के टाइम जो ना वो इस्तेमाल करेंगे, अपना फेस वॉश करेंगे या तो व्हाइट एश ब्यूटी सोप से या फिर फेस वॉश से, अच्छे तरीके से अपने चेहरे को साफ कीजिए, क्लीन कीजिए, उसके बाद व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए, सारी रात लगी रहने दें, उसके बाद सुबह उठकर अपना फेस वॉश दोबारा से कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सिर्फ ये 5 रातों का प्लान है जनाब, 5 रातें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लड़के लड़कियां सभी इस्तेमाल करेंगे, ऑल स्किन टाइप के लिए है, नेचुरल अज़ा से तैयार शुदा है, तो और क्या चाहिए आप लोगों को। उसके अलावा अगर डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब की बात करें तो इसको कैसे लगाना है, तो इसको भी आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, रात के टाइम आप इस्तेमाल करेंगे, ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं। टीनेजर्स के लिए तो भाई बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा, क्योंकि खास करके टीनेजर्स की जब एज होती है ना वो 18 साल से आगे जाते हैं तो उनके चेहरे पर इतने दाने निकल आते हैं और वो तमाम तर चीजें उनको इतना परेशान कर देती हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा। आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लाजमी लगाकर देखिएगा, आपके चेहरे के दाने खत्म हो जाएंगे, दानों के निशानात खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी और क्लीन हो जाएगी। लगाने के तरीकेकार बिल्कुल वही है, रात के टाइम लगाएंगे, अपना फेस वॉश करेंगे, ठीक है, सबसे पहले चेहरे को साफ सुथरा रखिए, उसके बाद जो ना हाथों को भी साफ सुथरा रखिए, क्लीन हाथों से अपने चेहरे पर लगाइए जहां जहां पर दाने हैं निशानात हैं जो भी चीज आप रिमूव करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप व्हाइट एश लवली क्रीम लगाना चाहते हैं तो ये जनाब आप दिन में लगा सकते हैं, रात में लगा सकते हैं, दोपहर में जब आपका दिल करे लगाएंगे, क्योंकि व्हाइट एश लवली क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, और ये आप लड़के लड़कियां मर्द हजरात खवातीन बच्चे सारे लोग ही इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट एश लवली क्रीम ऐसा है कि बस आप थोड़ी सी अपने चेहरे पर लगा लें और आप रेडी हैं। और ये एक मजे की बात जो मुझे लगती है कि व्हाइट एश लवली क्रीम गर्मियों के सीजन के लिए तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा, क्योंकि व्हाइट एश लवली क्रीम जो है इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, और सनस्क्रीन ऐड करने का जो मकसद है वो बिल्कुल ये है कि आप लोगों की स्किन जो है ना वो खूबसूरत होने के साथ साथ आपकी स्किन की हिफाजत भी होती रहे, यानी कि ये जो आपके चेहरे पर सूरज के असरात पड़ते हैं ना जो कि बहुत डेंजरस होते हैं, आपकी स्किन जो है वो डल हो जाती है, आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब आप व्हाइट एश लवली क्रीम लगाकर जाते हैं, कहीं ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ये सारे भी कोई भी काम आप करते हैं, तो व्हाइट एश लवली क्रीम बस थोड़ी सी आप अपने चेहरे पर लगा लें, आपके चेहरे पर खूबसूरती भी आपको मिलेगी और आपके चेहरे की स्किन जो है वो प्रोटेक्ट भी होती रहेगी। तो ये बहुत एक अच्छा सा प्रोडक्ट है, आप जरूर इसे इस्तेमाल करके देखिएगा और अपनी खूबसूरती

को बढ़ाती रहिए, क्योंकि आप अब इस्तेमाल करेंगे व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और अगर आप अपने एरिया के अंदर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो फिर आप डायल कीजिए 03-15-799-0595। ओके जी, आज मैंने आप लोगों से सवाल ये पूछा कि आप मुझे बताएंगे ऑनलाइन दोस्तियां आपको क्या लगता है कि वो बेहतर हैं या फिर रियल लाइफ वाली दोस्तियां ज्यादा बेहतर हैं, मुझे बताइए जल्दी जल्दी से। और इसी के साथ साथ आज मैं आप लोगों की कॉल्स भी पिक करने वाली हूं, तो प्रोग्राम में कॉल्स भी आपकी होंगी, तो जरा मैं आप लोगों के मैसेजेस जल्दी से खत्म कर लेती हूं, ऐसा ना हो कि फिर आप लोगों के मैसेजेस रह जाएं। तो यहां पर वासु भाई कहते अदी सिडो तमाम जो प्यारो ए मिठो आवाज बुधण अच्छी वयासी अदी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा। और सैयद फारूक कहते हैं 3 साल बाद तमाम जो शो बुधा तो जैसे छोड़ा था बिल्कुल वैसे ही आज भी आपकी आवाज, लोग तो 2-3 दिन बाद तो आकर कहते हैं कि आपकी आवाज तो चेंज हो गई है, आपकी आवाज तो इतनी बदल गई है। ये देखें भाई, तो 3 सालों के बाद सुन रहे फिर भी कह रहे हैं आपकी आवाज वैसी की वैसी ही है, देख लें। अच्छा उसके अलावा कहते हैं क्या कहते हैं, एक एडवाइस ही आपको सिंगिंग स्टार्ट करें भाई। सिंगिंग के बारे में तो पता नहीं आजकल लोग इतना ज्यादा क्यों कह रहे हैं मुझे, और ऐसा काम आप मुझे कह रहे हैं जो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। और उसके अलावा चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा आप कैसी हैं, जबरदस्त नाश्ते आपने आगाज किया है और व्हाइटिश लवली क्रीम बहुत अच्छी है, चले बहुत शुक्रिया व्हाइटिश के आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करती रही है। और अली मोहम्मद कुंदर हमारे साथ ही, वालेकुम असलम प्यारा भाई। और हैं जी ये मोलाई मुजाहिद बोजदार सिड्डू जी शो नाई से आपका लाहौती साजन चांडियो सलाम कह रहा है, वालेकुम अस्सलाम आप दोनों को। ओके जी ओके चाचा तव्हां छा था चओ छा मार्केट में, मार्केट में तो मुख्य लगे तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हलन पाया, अगर तव्हां जे मार्केट में न थे कोन हलन पाया तो तव्हां अवेलेबल करायो सही आ। और उन खां अलावा छा था चओ गाने जी फरमाइश कई ठीक है, तव्हां लिंक मुख्य शेयर कयो मां हलाइण जी कोशिश कंदमि। और उन खां अलावा किशोर भाई कहते हैं अच्छा कहते हैं शोहर ने बीवी से बोला आज इतवार

चाचा खालिद कहते हैं ऑनलाइन टोटली फ्रॉड है बेटा सिद्रा, योर टॉपिक आंसर ओके। ऑनलाइन तो वाकई ऐसा है कि लोग यकीन कर लेते हैं लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। अच्छा धरती दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं प्यारी? अच्छा नूरेसन तुनो भाई कहते हैं आपने थर्सडे वाले शो में स्मार्ट किशोर के दो गाने प्ले किए थे, ये तो आपने बिल्कुल एक झूठ बोल दिया कि हमने दो गाने लगाए थे, शायद एक ही भी लगाया हो उनका। और कहते हैं मैं आपकी, हाँ जी बिल्कुल, आप कंप्लेन कीजिए, जो बात गलत हो तो उसके ऊपर आप बेशक बोला करें, लेकिन जो बात हो ही ना तो उसके ऊपर बोलने का आपको कोई हक नहीं है। यह हकीकत आ जाएंगे जितनी इज्जत दी ना ओतरो ही मथे से चढ़ी वेंदो। बोलना तो खैर मैं बहुत कुछ आ रही थी लेकिन थोड़ा सा आपका लिहाज कर रही हूँ और जो शायद करना चाहिए थोड़ा ना आप अपने दिमाग का जरा इलाज करवाई, मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। और उन खां इलावा जी को पोस्ट के लाइक एंड शेयर करो, जनमानो अन्या ताई कौन करो है। अच्छा हमदुल्ला मला खेल हमारे दिन काफी दिनों के बाद हमारे शो में शामिल हो रहे हैं और कहते हैं कि मैं कोयटा से आपका शो सुन रहा हूं, वेलकम जी वेलकम, बहुत शुक्रिया। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि सिद्रा वो पूछना ये था कि मुल्क भर में आम का कत्ल हो रहा है तो उसे कत्ल आम कहा जा सकता है? बिल्कुल जी कहा जा सकता है। और नखा इलावा जी को है ना, सो अगर तुम्हारा वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल अन्या ताई कौन कयो है तो बाबा कंदा हलो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट तमाजे खूबसूरती की जमानत आए, अगर तुम चाहो था तो तुम्हारी खूबसूरती तमाशा गड रहे, खूबसूरती की हिफाजत भी थींदी रहे, तो तुम वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो मर्द मायू सब ही लगाएन पया, तो तुम भी लगायो बाबा सोना सोना थींदा हलो। और नाजिर लाया हमारे साथ है, नाजिर लाया हमारे साथ कहाँ से है जी? ओके जी लाया से आप हमारे शो सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा आदिल कहते हैं सिद्रा ये गाना, हाँ चले ये गाना आपको सुनाते हैं, थोड़ा सबर कीजिए। और लुबी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं सिद्धू जानी क्या हाल है आपके, मैं भी आपके साथ साथ हूँ, नाइस शो सिद्धू, आज मास्टर मजदूर का गाना तो प्ले करो, आज ये किसी और की फरमाइश है, चले ठीक है मैं देखती हूँ, कोई भी लगा दूँ ना या फिर आपने गाना भी बोला है। ओके जवार अली डिनो अब्बासी हमारे साथ है, ओके जवार भाई तुम्हारा मोहब्बत वन इदा एसटी का शेयर करे सदा शो भला खैर था है। दर्दे दिल कहती है कि ये लाजिम तो नहीं कि तुझे आंखों से ही देखूं, तेरी आवाज को सुनना तेरे दीदार से कम तो नहीं, यह भी गाल आए। अच्छा किशोर भाई कहते हैं टॉपिक असा सब आजमाए बैठा आयो, फेस टू फेस वाली गाल अलग आ, वो रिश्तो भले केड़ो भी हो जे। सही सही सही सही।

क्या हुआ किशोर भाई, आपको हवा हवा इतनी मतलब याद है आजकल? हवा हवा क्या हो गया है आपके यहाँ कराची में? हवाएं कुछ ज्यादा चल रही है बताए जरा। उनके अलावा जेको था वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो को न, छो त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल जॾहिं तव्हां कंदा त तव्हां बि पोइ हवा में उॾंदा, सही आहे? ॿियनि खे त ख़ैर तव्हां उॾायो था पर तव्हां पाण बि उॾो, सही आहे न?

स्वागत है। अलीजा भी हमारा शो सुन रही है। अलीजा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपको भी वेलकम करते हैं। साथ साथ जो है ना, आप डायल करती रहिए 03-15-799-0595। पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और जी, ये हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जमान भाई। क्या कहते हैं टॉपिक, इतनी महंगाई है दोनों को इग्नोर किया जाए। ये तो वैसे सोचा ही नहीं था, दोस्ती का। हाँ ठीक है, बस ठीक है, मैं समझ गई बात को, गहराई को समझ गई हूँ। अच्छा, दर्द दिल क्या कहती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है ना, कुछ लोग आते हैं दो तीन दिन बाद या दो तीन हफ्तों बाद आके कहते हैं, तुम्हारी आवाज़ तो मट्टी सी भैया जाए। अगर लोग भी कहती हैं ऑनलाइन दोस्ती अच्छी नहीं है, दुख देती है ऑनलाइन दोस्ती। हाँ तो नकना कहे ऑनलाइन दोस्ती, लुबड़ी तो वैसे भी ॾाढी मतलब मासूम छोकरी आहे। इन खां अलावा जेको अच्छा, सैयद फारूक लाड़काना आए हैं। सैयद फारूक, आपको वेलकम करते हैं लाड़काना आने पर। और ये चेतन राम ओड हमारे साथ है उमरकोट खां, तमाशा जो प्रोग्राम बुधो पया मोहब्बतूं प्यारे बाजू।

अच्छा ये बात है, अगर मतलब जो है ना, मैं किसी के कहने पर किसी को ब्लॉक नहीं करती, हाँ उन्हनि जा पांजा कर तू तो कुछ अड़ा हूं जी वजह से वो ब्लॉक लिस्ट में वेंदा है, तो यह गाल अथव मता वरी कोई न गलत फहमी रहे तो पापा मुझे चवण ते ॾिस फलाने के ब्लॉक कयो थे न, या का भी अड़ी कोई भी पांजे ज़हन में यह गाल न वेहारे, पांजा कर तू तो वठी वेंदा आहिनि हर कंहिंखे ब्लॉक लिस्ट में, समझो था। हिते मुझे ख्याल में कोई भी एतिरो इम्पोर्टेंट न आहे त मां हुनजे चवण ते कंहिंखे ब्लॉक कयां, समझो था। इहा ॻाल्हि पंहिंजे ज़हन में वेहारे छॾियो।

अच्छा लैला मस्त बनायो है ना गाने जी फरमाइश मुखे कुछ डी पे शायद इमरान भाई कई हुई सोमो ही गानो उन डेडिकेट किया गुड गुड इमरान भाई जो है ना वो वाइट एसी लवली क्रीम भी लगाए पो आई सफा लवली लवली थी वो है अगर तवा भी वाइट एसी लवली क्रीम लगायो था या वरी कोई भी प्रोडक्ट लगायो था या वाइट एस ब्यूटी क्रीम लगायो था डॉक्टर पिंपल ट्यूब लगायो था साबुन लगायो था फेस वॉश लगायो था मुखे बुधायो नी बुधाई ना छू ना आयो भला इतने भी कंजूस थी न मड़ंदऊ।

अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं कि सदरा लोग ऑनलाइन भी बोलते हैं हम अच्छे हैं लेकिन वक्त के साथ उनकी असलियत सामने आ जाती, अब तुम अपने प्रोग्राम में ही देख लो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बुरो मानो ना हमेशा बुरो ही हूँ है। उनके तव्हां खे एॾी रिस्पेक्ट ॾियो छा बि कयो, पंहिंजी मतिलबु मूंखे लॻंदो त मां कंहिंखे इज़त ॾेई करे उनखे शायदि बहितर बणाए सघंदी, पर इहो ग़लति हूंदो आहे। तव्हां चाहे बुरो इंसान जेको न बुरो ई रहंदो आहे, चाहे तव्हां उनखे इज़त ॾियो या न ॾियो, हुन सां उनखे फ़र्क़ु न आहे पवंदो। सो बसि ठीकु आहे, जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे, और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहे, ठीक है। और सोना रोमियो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। जी वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं? अल्लाह किशोर भाई पान हवा उनमें आ छोबला खैर ताई। इकबाल लाशारी हमारे साथ मीरपुर खास से ज्वाइन कर चुके हैं जी प्रोग्राम को, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं ना 2 बजे के बाद आप लोगों की कॉल्स की जाने आने वाली हूँ, तो आप कॉल्स पर आइएगा और मुझे बताइएगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट का। और वैसे भी आप लोगों से ये चीज मैंने जानी थी, इसीलिए मैंने कुछ दिनों के बाद जो है ना वो कॉल्स लेना स्टार्ट करी, ताकि आप लोगों से मैं जान सकूं कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं।

0: अच्छा बशीर लगारी गोट मीर खान लगारी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर तवाजी सफा ठीक है ता बुदा की आयो खुश आयो मजे में आयो आई दाने गोठ में मिलन था कोनी प्रोडक्ट बुधाई तो सही और अब्दुल्ला महर हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम बाजी वाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त आहे मा हणा तो वाह वाह वाह वाह रिजल्ट की मिला बुधाई तो सही और मीर अला रिनो खान टालपुर हमारे साथी आपका शो विनी विनी नाई से सलाम आपको जी वालेकुम अस्सलाम कश्यप लिए से गड्डा कश्यप जे थी छा हाल सिदरा आप कैसी हैं गुड आफ्टरनून मोला आपको सदा सलामत रखे अल्लाह पाक करे आमीन मेरी जान सेम आपके लिए भी और चाचा खाले जूनी जो हमारे साथ मौजूद हैं बिल्कुल चाचा तवाजा मैसेज पेनल ते खोड़ सारा आए बिल्कुल बिल्कुल मोहब्बत ओके सर टाइम तो आए अस न्यूज ब्रेक वा ठीक है उन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वी उन गड मोटी ठीक है तुम काली नो इतने वेठा हो ओ ही वही ओ ही अचान थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड इन कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए
1: नूरो नौ शहरों मीरपुर अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसई नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
3: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
4: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
5: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
6: 50,480 वोटर पंहिंजे वोट जो आइनी हक़ इस्तेमाल कंदा आईजी गिरिजी बल्तिस्तान जो चवण आहे सिक्योरिटी जा इंतजाम सख़्त कया विया आहिनि 17,500 अहलकार सिक्योरिटी ते मुक़रर हूंदा असास पोलिंग स्टेशन ते इज़ाफ़ी नफ़री मुक़रर कई वेंदी रेंजर्स पुलिस ऐं ॿिया कानून लागू कंदड़ इदारा अलर्ट हूंदा पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज़ाद कश्मीर सूरतहाल ते पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर जो इजलास अॼु शाम तलब करे वरितो ज़रियनि मूजिब पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सरबराही में आज़ाद कश्मीर सूरतहाल ते इजलास अॼु इस्लामाबाद में थींदो

पाबंदी मंडियल तंजीम जे नवं जून ते वारे एहतजाज जे सदे ते सभु आज़ाद कश्मीर में मामूली ज़िंदगी मुतासिर। एहतजाज जे सदे ते ॾिसंदे सिक्योरिटी हाई अलर्ट कई वई। आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ जो चवण आहे त हाणे बि अवामी एक्शन कमेटी सां ॻाल्हियुनि ज़रिए रस्तो करणु घुर्जे, पर कानून हथ में खयो वियो त रियासत कानून मूजिब मुंहुं ॾींदी। हुकूमत ऐं पीपल्स पार्टीअ विच में बजेट बाबति मुशावरत अॼु थियण जो इम्कान। सदर आसिफ अली ज़रदारी जी अॻवाणी में पीपल्स पार्टी जो वफ़द हुकूमती वफ़द सां मुलाकात कंदो। उन खां अॻु सदर आसिफ ज़रदारी पीपल्स पार्टी जे ॻाल्हियुनि वारी कमेटीअ सां मुलाकात कंदो। मुलाकात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वॾो वज़ीर मुराद अली शाह, श्री रहमान मज़ारी ऐं नबीद कमर शिरकत कंदा।

0: मौसमियात खाते सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकन ला हीट वे अलर्ट जारी कर छो। सिंध के कुछ जिलों में मौसम अज का 12 जून तक गर्म होंगी। मौसमियात खाते चवाद सखर शिकारपुर कंबर शिदादकोट जखमबाद लाड़कानो दादू नवाबशाह घोटकी खैरपुर मसरफोज जुपारो मामूल का 6 सेंटीग्रेड तक होंद। मुख्तलिफ इलाकन में रात के वक्त गर्मी बरकरार रही। शहरी गर्मी में गैर जरूरी तौर बाहर न निकरन। सिंध में जरई पानी की खोड 56% तक पहुंची वही। कोटड़ी बैराज से 56% गुलू बैराज से 30% खोड बरकरार। सखर बैराज से भी पानी की शदीद खोड आबादगार सारेलू बेजो पखण लाइ परेशान। मथाओं वेकरो 75,000 हेठाओं वेकरो 54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज जो मथाओं वेकरो 50,000 हेठाओं 18,500 क्यूसिक थी वो। कोटड़ी बैराज वट मथाओं वेकरो 11,000 क्यूसिक थी वो। डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ मुकम्मल तौर से बंद कर वो। बलूचिस्तान के शहर मूसाखेल में खानगी टीवी चैनल जो सहाफी कतल। हथियारबंद दुकान से बैठल सहाफी लाला अशरफील के 6 गोलियों कतल करने बाद फरार थी गया। सहाफी जो मड़ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस बताया वाय वाकई में मुलिस जवाबदारन के जल्द गिरफ्तार किया वेंदो। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में फायरिंग नौजवान कतल। एक जख्मी जामिद चौक भरसा फायरिंग में 17 साल शिराज अहमद मारज पे घो जख्मी। पुलिस मार्जल जो मड आए जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर छो। जोई भरसा शहानी बिरादरी के बिंदुन में छिड़ो नौजवान कतल। काछे के गोट दोस्त मोहम्मद शहानी में मामूली गाल छेड़े दौरान फायरिंग सबब मोहम्मद रहीम उर्फ अमीर शहानी कतल। पुलिस मौजूद बिन्हीं धरन में रेती खान के मामले छेड़ो थो। मार्जिबल नौजवान जो लाज जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6। बुधंदा रहो।

ओके हो गया जी। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बता रही हैं कि दोस्ती ऑफलाइन अच्छी होती है या फिर ऑनलाइन अच्छी होती है। ज्यादातर आजकल तो देखा जाए तो बहुत से जेंजीज की बात की जाए तो वो तो ऐसा है कि उनको रियल लाइफ वाली दोस्ती तो हजम ही नहीं हो रही रियल लाइफ में, तो वो मुझे समझ लें कि ऐसा वो है ही नहीं। उनको बस सारी चीजें जो ना ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, दोस्तियां ऑनलाइन, रिश्तेदारियां ऑनलाइन चल रही हैं आजकल। तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज नहीं, ऑनलाइन दोस्तियां सही है या फिर रियल लाइफ वाली दोस्तियां सही है। ओके जी, इसी के साथ साथ हम आप लोगों के जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू जान रहे हैं, आप लोगों के मैसेजेस हैं, आप लोगों के कॉमेंट्स हैं, आप लोगों की मैं कॉल्स भी पिक करूंगी और साथ साथ आप लोगों से जानेंगे कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, दी स्किन ब्यूटी क्रीम या फिर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में से कौन सा

0: ओके जबरदस्त जबरदस्त किरण दोस्त की याद करो प्यारो भा
1: हाँ भाजी इंदा बोला भाई ने बोला भाई भाई बिरयानी और देखो बाबा का बोला हां मत तो ये जाते जाते वाला जो बच्चे के दो कम कर का
0: ओके ओके थैंक यू सो मच प्यारा भा प्रोग्राम में शामिल थे तो वीआईपी गानों बुधाइंदा आयो जनाब उन अलावा जो तुम भी कॉल कर सो तो कॉलिंग नंबर है 0332123228 नेक्स्ट कॉल दिसूँ तो केयर कॉलर ऐसे सगर मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वाह
0: वाह
1: अरे उजड़ उजड़ के जो बसता रहा वो शहर हूँ मैं अपने मोहब्बत कबूल हो जिस शख्स ने मैं तुझे चाह रहे मांगा भी नहीं
0: उसे तो मिल गया
1: तो मिल भी जाए तो इंसाफ करिए
0: कहाँ इंसाफ है भाई
1: न जाने किस मजार के चरा रहे हम मजार के चरा रहे हम जो भी आया गला के चला गया अपने इंसाफ मनो जागन का सलाम है मोहब्बत कबूल हो।
0: वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं जी ठीक ठाक है
1: बंतन पा जगह करमन भी बच्चियों के हाल लिखे सबसे पहले कई सवाल लिखे
0: वाह वाह
1: सबसे पहले कई सवाल लिखे पड़ गई जब नजर तरीके पर एक महविश के खदो खाल लिखे एक महविश के खदो खाल लिखे दिलकशी बस तेरे बलंदी तेरे अफसों तेरे कमाल लिखे हर को दिए ताजगी हमने शायरी में नए ख्याल लिखे हर शायरी में नए ख्याल लिखे
0: नए नए ख्याल लिखने चाहिए
1: चीख लिखी लिखा है सुनाता वो नाक लिखा है कतार लिखे नाम हमें कहीं लिखी हमने बेघरी को कहीं बना लिखा
0: वतन
1: पाक है खाए में रहो अल्ता बनो जाग जाने
0: रिजवान साहब की तमाम सलाम नी नासी मुझ चाचो बस पांच
1: जी जेकी हकीकत यहां है मुझे मोहब्बत ना है बड़ो तजुर्बो हम आई ही चुनम देगी अब एक्चुअल जेकी भी लाइफ में मानू अचानक मिली हुई दुआ रस्ते में दे भी मिली दुआ हुआ मोहब्बत सही आ बाकी या जेकी फेसबुक और
0: या गलत है
1: लेकिन जिंदगी की सभी गाँव में लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं अरे दिल के अजीब रिश्ते होते हैं और सांस लेने से तू

0: करते ता कॉल करे दिसजो
1: जी ना नंबर भी मा सेव कर रखो दी
0: तो कॉल कई थव कोन रुगो सेव कर रखियो थव
1: ना कॉल न कई आया
0: अरे पो ना सेव करने जो फायदो छ
1: कम भी ना है मा ही सोचो
0: ना पो मिले ता ठीक आ ना मिले ना पो कॉल करजो ठीक आ
1: यो सही आ कॉल करे सकूंगा ओके सब सब जे के बुधन जाना
0: जी जी
1: पाजो रेडियो उनके कोड तरह सलाम
0: जी जी
1: आई तो शौक सुने कई मुमताज मोलाई जो
0: चलो
1: को यार पैजे के न सा परचाए सगया सी
0: छो न परचाया बस छो न परचाया बस छो न परचाया बस
1: कस मजबूरी
0: होगी चलो परचाने जो हुनर न हों दो ये चो ओके ओके चलो कॉल इलाही लंबी थी बेन कॉलन के वठंदासीं सो मोहब्बत प्यारे भाजो सोलंकी भाषा सेकंड मौजूद है नालो त विसरी वयो खैर तां प्रोग्राम बुधो पिया वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो तां ही तमाम भी कॉल करे सगो था कॉलिंग नंबर आहे 0332231322 एंड 88

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

आपके डीसी के साथ साथ मैंने आज प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछा था कि मुझे बताइए जरा कि ऑफलाइन दोस्तियां ज्यादा बेहतर होती है या फिर ऑनलाइन दोस्तियां ज्यादा बेहतर है. आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है कि ऑनलाइन दोस्ती सही है या फिर ऑफलाइन दोस्ती सही है. इसी के साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस हैं जो कि आते जा रहे हैं.

ओके जी, कश्यप कहती हैं कि निगहत नाज का कोई भी सॉन्ग सुनाना वीआईपी हो, ओके जी जी बिल्कुल, निगहत नाज का गाना सुनेंगे आज नहीं तो कल जरूर सुनेंगे, ठीक है। और चाचा खालिद आपका बहुत शुक्रिया, आपने पैनल पर बहुत ज्यादा वाले मैसेजेस कर दिए हैं। और ये साइमा मीर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम साइमा मीर, कहती माशाल्लाह माई बेस्ट राजे सिद्धा मुस्कान, आओ चाय पियो, टॉपिक दिलियां सच्ची हो तो दोनों अच्छी फिर भी रियल वफादार हो सकती है, ओके जी। और गाना जो आपने बोला है वो थोड़ा सा कट हो गया है मैसेज, आपका बहुत शुक्रिया। बतू तमाम जो इरम कहती है आज मैं भी आपका शो सुन रही हूँ, बहुत शुक्रिया। वैसे तो आप देखिए, हाँ हमारी प्यारी इरम, हमारी आपकी वॉइस एंड आपकी हंसी बहुत बेस्ट है, माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारी हैं। आप ही अगर आपको टाइम मिले तो सॉन्ग चलाना नहीं तो चलें, ठीक है ठीक है, मैं आपका गाना निगहत नाज का गाना जो ना वो मैं कल लाजमी लगा दूंगी, ठीक है, बस आप जो है ना वो वेट कीजिएगा। और कहती है अच्छा ठीक है, साइमा कहती है गाल कंजूसी जी ना है सिद्रा, गाल सच जी आहे, तो पो सही आ ना तमा के जको चवां तो मनी ना अच्छा चलो ठीक है, मजा क्या भाई, वैसे सही है। और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है मेरी प्यारी सी परी। और शोनी कहती है आपकी जान में आ गई आपके शो में, बहुत अच्छा किया मेरी जाना आपने शोनी। और राशिद अवान हमारे साथ फ्रॉम मेहरापुर से कहते हैं सिद्रा मुस्कान आपका प्रोग्राम हमेशा की तरह अच्छा जा रहा है, हमेशा खुश रहें, आमीन, आप भी खुश रहें। और अच्छा लोबी कहती है ऑनलाइन दोस्त बिना बताए ही छोड़ देते हैं, इसीलिए ऑनलाइन दोस्ती से दूर रहना चाहिए, ये भी सही बात है जी। और जमशेद फारूकी हमारे साथ मौजूद है, जमशेद फारूकी भाई मुजफ्फरगढ़ से हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और ठूप चूसल से मोलाई मुजाहिद बोजार के सिडो जी, टॉपिक वो आपने कहावत तो सुनी होगी, रोटी तंदूर की अच्छी दोस्ती दूर की अच्छी, मेरे ख्याल में दोस्ती रियल लाइफ की अच्छी होती है, क्या बोलती तो माँ भी यू ही बोलती। और वासु भाई हमारे साथ क्या कहते हैं, सिडो ऑफलाइन दोस्ती भली आहे, ऑफलाइन दोस्ती भली आए, चलो सही है, ता चौथा तो मनु था न मनु। अच्छा हिदायतुल्ला कहते हैं सिद्रा आपने नोट किया है आजकल सुबह नहीं होती बल्कि सीधा दोपहर होती है, या तवा सफा सही गाल कया, असा सुबह ना दिसंदा वाकई असा दोपहर दिसंदा आयो। और उनका अलावा आदिल कहती इतना शेयरिंग भी कम है क्या आपके लिए, नहीं नहीं वैसे आज आपने बहुत अच्छी शेयरिंग दे दी है मुझे, सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और उनका अलावा की राजस्थान। अच्छा किशोर भाई कहते अदी टॉपिक जैके ऑफलाइन केर मो नथो देन वो बेचारा ऑनलाइन दोस्ती करना है।

वठो न भला शर्म जी केड़ी गाल आहे यो एडो शर्म काडा आंदो थो बुधायो त सही मुखे अच्छा उन खा अलावा अनवर भा से गड मौजूद है अनवर भा वालेकुम अस्सलाम खुश आयो सफा मजे में आयो और रहन जी और के राजी मीर मुमताज अली जतोई हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम भा ताजु मोहब्बतू आए रजा बिरोही हमारे साथ हैं अली अकबर बिरोही भाई भी हमारे साथ मौजूद है थैंक यू सो मच आप दोनों को भी वेलकम करते हैं अच्छा हमारे साथ मौजूद है थैंक यू सो मच अच्छा मां तो सिर्फ यो ही ताके चंदन त वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो पया त कंदा रहो ऐ न पया कयो त कयो बाबा वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कंदा न त ताके खबर के पदी त ही वाकई भला प्रोडक्ट आ है तो तमा इस्तेमाल करी दिसो तमाने खूबसूरती तमाके मिली वेनी समझो ता ऐ दी स्किन ब्यूटी क्रीम भी मार्केट में अवेलेबल तव तमा वन्यो वनी वठी चो मानन का पुछा गुछा करायो किथे मिले दी नथी मिले जे तमा जले आसानी थी वने ठीक है ऐ कॉलिंग नंबर आ है 0332213228 सो इन नंबर ते तमा राबतो कयो नंबर ते राबतो करण खा पोई तमा जे एरिया में अवेलेबल थी वेंदा ही सब प्रोडक्ट जेके भी तमा के प्रोग्राम में बुधाया वनन था सो हाने ही वाली कॉल वठूंदा दिसू ना केर कॉलर एस सगड मौजूद आए छा तुजे हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम केर भास सगड मौजूद आए

अच्छा चले मुखे हाँ जी आवाज कंहिंखे समुझ में अचे त मूंखे ॿुधाए छा चयो अलाए अहिड़ो मसलो वाके नेटवर्क सां ऐं नेटवर्क एॾो ख़राब थियण जी वजह सां तव्हांजी कॉल्स तव्हांजो आवाज़ मूं ताईं सही तरीक़े सां पहुचे कोन पियो सो इन वे मां कोशिश कयां थी त तव्हांजी कॉल जेके आहिनि प्रोग्राम में शामिल थी सघनि ऐं कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-88 जिते तव्हांजे घर में सही नेटवर्क ईंदो हुजे महिरबानी करे उते बि करे तव्हां कॉल कयो जीअं असां ताईं तव्हांजो आवाज़ सही तरीक़े सां पहुचे ठीकु आहे सो नेक्स्ट कॉल हैलो अस्सलाम वालेकुम एक और कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम जी आवाज़ अचे थो

अच्छा अर्जी बुटोमी अगर अञा ताईं वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स कोन था मिलनि त तव्हां लुबना ज़रूर नंबर ते राबितो कजो जीअं तव्हांजे अर्जी बुटो ॻोठ में बि अवेलेबल थी वञनि. वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो नंबर आहे 03 15 799 0595.

हमारे बस की बात ही नहीं बाबा। अच्छा सोनी आप गाना वो टाइम जरा फुल हो चुका है तो फिर कल।

आज मुझे शदीद जो है ना वो ये डायलॉग याद आ रहा है तो था तो बस मैं थक गई और यहाँ पर आप लोगों से इजाजत लेते वरी इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात जे कायो मुझे सुभाने वाली प्रोग्राम में थेण वाली है 1 बजे का 3 बजे तक तमाम जो सा साथ हुंदा है जनाब इन सोणी प्रोग्राम में जिन जो नालो है व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड आए बाबा तमाम दाई व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तमाम इस्तेमाल कंदा आयो सोणा थिंदा आयो अन्या सोणा थिंदा आयो अन्या वधिक सोणा थिंदा आयो तो इस्तेमाल कंदा हलो पानी खूबसूरती के वधायो उन सा गडो गड किथे का गलती थी हुजे तमाम माजरत कया पई को एडो लव्स गाला जे को तमाम के सुठो न लगो जे तरे लाए भी माजरत मोकलानी ना है बाबू सिन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर

0: सर्विस टायर पाकिस्तान ग्लोबल टायर इसमें है।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN।
2: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
3: GFM 91.6।
4: इट्स 3 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
5: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
6: क्योटी हाई अलर्ट कई वही। आजाद कश्मीर के वजीर आजम फैसल मुमताज राठौड़ चवन है हाने पर अवामी एक्शन कमेटी से गाल जरिए रस्तों करण घुर्जे पर कानून हथ में खे वो तो रियासत कानून मूजिब मुंह डींदी। आजाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट मुआजन की सीटन के हुकूमती मौके दुरुस्त करार दई छो। सुप्रीम कोर्ट राय डी त 12 मुहाजर सीटों आर्टिकल 22A तहत आइनी तहफुज रखन थियो। इंतजामी फैसलन से तब्दील न तो कर सकते सीटन में तब्दीली लाय आर्टिकल 33A तहत आइनी तरमीम आननी पवी। मुहाजर सीटन की तारीखी बुनियाद 1964 कानून से जुड़ियल है। सदर आजाद कश्मीर हुकूमती सलाह के आइन के आर्टिकल 46 तहत सदारती रेफरेंस दाखिल कया हो। हुकूमत ए पीपल्स पार्टी विच में बजट बाबत मुशावरत अचण जो इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी की अगवाणी में पीपल्स पार्टी जो वफद हुकूमती वफद से मुलाकात कन्द।

खां अग सदर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी की गालन वाली कमेटी से मुलाकात कंदो। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी वडो वजीर मुराद अली शाह श्री रहमान मजारी नवीद कमर शिरकत कंदा।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू सुगर खा पी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां जिसके स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से एज ब्यूट ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे हकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू सुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी दाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो
2: लई। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: ढोला बिछड़ गया

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे
4: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आजाद कश्मीर सूरतहाल थे पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर इजलास अज शाम तलब करे वरतो। ज़रियन मौजूद पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में आजाद कश्मीर सूरतहाल थे इजलास अज इस्लामाबाद में थी रहा है। पाबंदी मंडल तंजीम के 9 जून वाले एहतजाज के सद सबब आजाद कश्मीर में मामूल की जिंदगी मुतासिर एहतजाज के सद के दिसंदे सिक्योरिटी हाई अलर्ट कई वही। आजाद कश्मीर के वजीर आजम फैसल मुमताज राठौड़ चवण है हाने भी अवामी एक्शन कमेटी से गाल जरिए रस्तों करण घुर्जे पर कानून हथ में खो पो तो रियासत कानून मूजिब मुंह डींदी। आजाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट मुहाजरन की सीटों से हुकूमती मौकफ दुरुस्त करार दे छो। सुप्रीम कोर्ट राय डी तो 12 मुहाजर सीटों आर्टिकल 22A तहत आइनी तहफुज रखन थ इंतजामी फैसलों से तब्दील न तो कर सकते। सीटों में तब्दीली लाय आर्टिकल 33A तहत आइनी तरमीम आननी पवी। मुहाजर सीटों जो तारीखी बुनियाद 1907, 1974, 1970 के कानून से जुड़ियल है। सदर आजाद कश्मीर हुकूमती सलाह से आइन के आर्टिकल 46 तहत सदारती रेफरेंस दाखिल किया हो। क्वेटा में तेजाब हमले में जख्मी थे लेडी डॉक्टर मानूर कराची की निजी अस्पताल मुंतकिल। तेजाब हमले में जख्मी थे लेडी डॉक्टर मानूर के एयर एम्बुलेंस जरिए कराची आंदो पो। अस्पताल इंतजामिया जो चवण है डॉक्टर मानूर की हालत गणती का बाहर है। इस जख्मी मुतासिर थियन खुशकिस्मती से लेडी डॉक्टर मानूर की अखियन जो नूर महफूज है। डॉक्टर मानूर के तेजाब हमलों के जवाबदार

अब्दुर्रज़ाक पाण बि ज़ख़्मी थी पियो हो। मौसमियात खाते सिंध समेत मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि लाइ हीट वेव अलर्ट जारी करे छॾियो। सिंध जे कुझु ज़िलनि में मौसम जून ताईं वधीक गरम हूंदी। मौसमियात खाते चयो आहे त सकर, शिकारपुर, कंबर, सिदातकोट, जकमबाद, लाड़काणे, दादू, नवाबशाह, घोटकी, कैरपुर, नौशर फिरोज जो पारो मामूल खां 6 सेंटीग्रेड ताईं वधीक हूंदो। मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में राति जे वक़्त बि गर्मी बरक़रार रहंदी। शहरी गर्मी में गैर ज़रूरी तौर ॿाहिरि न निकरनि।

0: सिंध में ज़रई पानी की खोड़ 56 सैकड़ों तक पहुंची वही। कोटली बैराज से 56 सैकड़ों और गुडू बैराज से 30 सैकड़ों खोड़ बरकरार। सखर बैराज से पानी की शदीद खोड़। आबादगार सारेलू वेझू पोखण लाइ परेशान। गुडू बैराज जो मथाओं विकरो 75,000 और हेठाओं विकरो 54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज जो मथाओं विकरो 50,000 और हेठाओं 18,500 क्यूसिक थी वो। कोटली बैराज वट मथाओं विकरो 11,000 क्यूसिक थी वो। डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ मुकम्मल तौर से बंद थी वो। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में फायरिंग। नौजवान कतल, एक जख्मी। जामे चौक बरसा फायरिंग में 17 साल शिराज अहमद मारज वो, एक जणो जख्मी। पुलिस मारज वो जो मर्ड है, जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर छो। जोई बरसा शहानी बिरादरी के बिंदड़ में झेड़ो। नौजवान कतल। काछे के गोट दोस्त मोहम्मद चाणी में मामूली गाल झेड़ दौरान फायरिंग सबब मोहम्मद रहीम उर्फ अमीर शहानी कतल। पुलिस मौजूद बिन्हीं धुरन में रेती खणण के मामले तां जेड़ो थियो। मारजीवल नौजवान जो लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले। हैदराबाद भरसा टालर जो कार के टक्कर, बजरा फौत, 3 जख्मी। मसूद बुरगड़ी भरसा नेशनल हाईवे के हादसे सबब कार में सवार फतेह मोहम्मद मरी अली मुस्तफा फौत, साजन अली महर अली गुलाम मुर्सा कांतियार जख्मी। नौंदम्बालो में पीएसएन औरत मुबैना तौर से तशद्दुद बाद घुटा डेई कतल। सिविल अस्पताल वाले इलाके जवाबदार अनवर माछी 60 साल मरियम माछी के मुबैना तौर से तशद्दुद बाद घुटा डेई कतल कयो। इतलात पुलिस वाके वाले हंध पहुंची, औरत जो लाश अस्पताल मुंतकिल कयो, जवाबदार गिरफ्तार। काजी अहमद भरसा जाल ए मुड़स के कतल जो जरगो। इल्जाम है तहल दुर के 1,96,00,000 रूपया दंड मुकरर। घोट अल्लाह डितो कल्याण में 1 साल लग कतल थियल मुर्तजा कल्याण और सन जाल मुनीरा के खून जो जरगो। रांझो कल्याण दुरते मिटे कतल जो 1,96,00,000 रूपया दंड मुकरर। जरगो जिलानी हाउस से आसिफ शाह जिलानी अली नवाज चांडो की सरपंची में थियो। कड़ी खेरो में कौमी अवामी तहरीक के सदे बिजली की ड्री लोड शेडिंग खिलाफ सिंध बलोचिस्तान दंग से धरणो। ट्रैफिक पौतल, गाड़ियों जो कतारू लगी पयू। मुजाहरीन जो चवण है तो गढ़ी खेरो शहर तोड़े बहराड़ में 20 कलाक लोड शेडिंग कई पई वे। सख्त गर्मी में बिजली की डिघी बंद सबब कारोबार टुप ए जिंदगी मफलूज बनल है। बिजली की डिघी लोड शेडिंग जो खात्मो आने परेशानी खत्म कई वे।
1: सिंध के अंदर सुपर पावर न है सवाए सिंधी आवाम के। इतने कैंजी भी बालादस्ती सरजमीन है सिंध से अरगून पर खून मुगल के कबूल न कर वो। ये जो शोरबो पिटन के सिंध जो सुपर पावर थियण की सिंधी आवाम इजाजत न।

0: ऐं तारीख़ जे वर्कनि ऐं मज़लूम तबक़नि जे ज़मीर बेज़िंदा रहंदड़ सिंध अज़ीम दानिश्वर कानूनदान लेखक ऐं सिंध जे मज़लूम तबक़नि जी सगारे आवाज़ रसूल बख़्श पलेजे जी अठीं वर्सी अॼु मल्हाई वेंदी। रसूल बख़्श पलेजे पंहिंजे सॼी जमार हक़ इंसाफ़ जमहूरियत ऐं क़ौमी सजाॻी लाइ अर्पे छॾी। क़ौमी अवामी तहरीक ऐं अवामी तहरीक पारां वर्सी जूं धारदार तक़रीबूं ठठे जे गोड़ जुंगचाई में थींदियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां काफ़िला वर्सी वारे हंधि पहुचण शुरू।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है, GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की

0: या है सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: नहीं सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्लियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: या ही सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network सिंध की आवाज।
3: इस फोन के कैमरे का तो रिजल्ट कितना अच्छा है ये तो देखो।
4: एक और नया सूट ये किस सहेली ने दिए आप?
5: एक्सक्यूज मी मेरी तरफ से गिफ्ट।

0: जमाना नहीं बदला, बेटियों के बारे में लोग अब भी वही रवायती ज़हन रखते हैं।
1: हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है।
2: तुम एक खोखली औरत हो, मर्दों से दिल लगी करने वाली।
0: अगर मेरे बेटे को ये ना मिले ना तो वो पागल हो जाएगा।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: लई। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नई का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम कहां के सच्चे थे, दर्द पी के मरते थे, जहर पी के जीते थे, जिंदगी के धोखे में हर किसी से लड़ते थे। हम कहां के सच्चे थे।

0: कैसा महसूस होगा?
1: उसे खो के जिससे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।

0: किया है सिंध जी दिल
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: काम भी रोक देता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: ट्रेवियर नून लीग जा 22 इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जा 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जा 11 और जेवा जा 8 है 266 आजाद उम्मीदवार चूंडन में हिस्सों वरतो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सदारत हेठ पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास, बिलावल भुट्टो जरदारी के आजाद कश्मीर के सियासत हाल से ब्रीफिंग डनी वही। इजलास में आजाद कश्मीर की सूरत हाल बाबत गौर वीचार किया वो। पाबंदी मंडल तंजीम के 9 जून वाले एहतजाज के सदे सबब आजाद कश्मीर में मामूल जिंदगी मुतासर, एहतजाज के सदे के दसंदे सिक्योरिटी हाई अलर्ट कई वही। आजाद कश्मीर के वजीर आजम फैसल मुमताज राठौड़ चवण है तो हाने भी अवामी एक्शन कमेटी से गाल जरिए रस्तो करण घुर्जे, पर कानून हथ में खो पो तो रियासत कानून मूजिब मुंह डींदी। आजाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट मुहाजरन की सीटों से हुकूमती मौकफ दुरुस्त करार दे छो। सुप्रीम कोर्ट राय डिनी तो 12 मुहाजर सीटों आर्टिकल 22A तहत आयनी तहफुज रखन थी, इंतजामी फैसलन से तब्दील न तो कर सकजे। सीटों में तब्दीली लाए आर्टिकल 33A तहत आयनी तरमीम आननी पवी। मुहाजर सीटों की तारीखी बुनियाद 1960, 1964, 1970 के कानून से जुड़ियल है। सदर आजाद कश्मीर हुकूमती सलाह के आयन की आर्टिकल 46A तहत सदारती रेफरेंस दाखिल किया हो। हुकूमत ए पीपल्स पार्टी विच में बजट बाबत मुशावरा थियण जो इम्कान, सदर आसिफ अली जरदारी अगवाणी में पीपल्स पार्टी के वफद हुकूमती वफद से मुलाकात कंदो। उन सदर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के गालिन वाले कमेटी से मुलाकात कंदो। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी, वडो वजीर मुराद अली शाह, शरीर रहमान ए नवीद कमर शिरकत कंदा। पाकिस्तान जो खिते में अमन लाए कोशिशों जारी, वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी पढ़ई वजीर अब्बास राखी से मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी मूजिब मोहसिन नकवी अब्बास राखी के सुप्रीम कोर्ट लाए खसूसी खत डो। मोहसिन नकवी गुजियल डी वजीर आजम शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल जो पैगाम खड़ी तेहरान पो हो। कोयटा में तेजाब हमले में जख्मी थियल लेडी डॉक्टर कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल, तेजाब हमले में जख्मी थियल लेडी डॉक्टर मानूर के जरिए कराची आंदो वो। अस्पताल इंतजामिया जो चवण है डॉक्टर मानूर की हालत खतरे का बाहर है, सरस अखियों मुतासर हुआ, खुशकिस्मती से लेडी डॉक्टर मानूर की अखियों जो नूर महफूज है। मानूर से तेजाब हमलों कर जवाबदार अब्जाक पान को जख्मी थी पो हो। मौसमियात खाते सिंध समेत मुल्क के मुख्य इलाकों में हीट व्यू अलर्ट जारी कर छो। कुछ जिलों में मौसम अज का 12 जून तक गर्म होंगी। मौसमियात खाते चवाए तो सखर, शिकारपुर, कंबर, शिरादकोट, चेकमबाद, लाड़कानो, दादू, नवाबशाह, घोटकी, खैरपुर, नुसरफरोज जो पारो मामूल का 6 सेंटीग्रेड तक होंद। मुख्तलिफ इलाकों में रात के वक्त भी गर्मी बरकरार रही, शहरी गर्मी में गैर जरूरी तौर बाहर न निकलन। सिंध में जरई पानी खोट 57% तई पहुंची वही। कोटली बैराज से 57, सक्कर बैराज से 36, गुडू बैराज से 34 आए पानी की खोट सबब बैराज में निकरंद वाहन के भी पंजे हिस्से का घट पानी मिलन लगो। डाउन स्ट्रीम पानी छोड़ मुकम्मल तौर से बंद किया वो। सेंट्रल जेल लाड़कानी में के अगुणे सूबाई सलाहकार इस्माइल डायरी की तबियत खराब, गणती जोगी हालत में अस्पताल मुंतकिल। इस्माइल डायरी के साह की तकलीफ सबब ट्रामा सेंटर लाड़कानी के ICU में दाखिल किया वो। सिंध के मुख्तलिफ शहर में पब्लिक हेल्थ खाते के कचर मुलाजमन मुतालबन की मान्यता लाए एतजाज किया। खैरपुर, शिरादकोट

0: कनकोट अणु मोहम्मद खान और सरफरोज बिन शहरनि में मुज़ाहिरा। मुलाज़िमनि जो चवणु आहे त 7 सालनि खां इदारे में कम करियूं पिया, अञा ताईं पको नथो कयो वञे। सरकार तरफ़ां ऐलानियल पघारूं बि नथियूं मिलनि, पको करे सरकार तरफ़ां ऐलानियल पघारूं जारी कयूं वञनि। गाज़ी अहमद भरिसां ज़ाल मुड़ुस जे क़तल जो जर्गो, इल्ज़ाम हेठि आयल दुर ते 1,96,00,000 रुपया ॾंड मुक़रर। गोड अला ॾिठो कलियार में 1 साल अॻु क़तल थियल मुर्तज़ा कलियार हर ज़ाल मुनीरा जे खून जो जर्गो, रांझो कलियार दुर ते 1,96,00,000 रुपया ॾंड मुक़रर। जर्गो जिलानी हाउस ते आसिफ शाह जिलानी अलीनवाज जे चांडियो जी सरपंचीअ में थियो। कराची जे इलाके कोरंगी कासवदी नदी में बोरड़ा बुडी पिया, हिक जो लाश हथ बे जी गोलाचारी। पोती बाड़े जो मड़ अस्पताल मुंतकिल कयो वियो, सुञाणप न थी सघी। रेस्क्यू ज़रियनि मूजिबि बुडी पियल ॿई बाड़े जी ॻोल्हा लाइ रेस्क्यू जो अमल जारी आहे।
1: सिंध जे अंदरि सुपर पावर न आहे सवाइ सिंधी आवाम जे। हिते कंहिंजी बि बालादस्ती सरज़मीन सिंध ते अरगूननि तरफ़ मोकिलनि खे क़बूल न कयो वियो। हे पिदाए छा पिद जो शोरबो, पिदनि खे सिंध जो सुपर पावर थियण जी सिंधी आवाम इजाज़त।

ऐं तारीख़ जे वर्कनि ऐं मज़लूम तबक़नि जे ज़मीर में ज़िंदा रहंदड़ सिंध जे अज़ीम दानिश्वर कानूनदान लेखक ऐं सिंध जे मज़लूम तबक़नि जे सगारी आवाज़ रसूल बख़्श पलेजे जी अठी वर्सी अॼु मल्हाई वेंदी। रसूल बख़्श पलेजे पंहिंजे सॼी ज़मार हक़ इंसाफ़ जमहूरियत ऐं क़ौमी सजाॻी लाइ अर्पे छॾी। क़ौमी अवामी तहरीक ऐं अवामी तहरीक पारां वर्सी जूं धारदार तक़रीबूं ठछे जे ॻोठ चुंगशाई में थींदियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां काफ़िला वर्सी वारे हंधि पहुचणु शुरू थी विया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: काश हमारे पास वैसी गाड़ी होगी तब जमाती भी।
4: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: कहती अम्मी, मैं मनोज उनकी जिंदगी में अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना दे दे।
2: देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डूंगर था भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICU।
1: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट पास अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नई का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: प्लेयर नहीं का चीज में आहे नकी करो नहीं।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल। ये मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। सिंध की हो
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: गिलगित बल्तिस्तान में कंहिंजी हुकूमत हूंदी, फैसले जो वक़्त वेझो अची वियो। 24 तकनि ते थियल चूंडनि खां पोइ वोटनि जी गणप जो अमल जारी। 24 तकनि ते चूंडनि लाइ 403 उमेदवार मैदान में लथल। पीपुल्स पार्टीअ जा 23, नून लीग जा 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टीअ जा 15 ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग जा 11 ऐं JUI जा 8, जॾहिं त 266 आज़ाद उमेदवार बि मैदान मारण लाइ चूंड में हिसो वरितो। गिलगित जी चूंड जा नतीजा तकरारी थियण जो ख़दशो। पीपुल्स पार्टी जे उमेदवारनि जो चूंड अमले ते PP जे उमेदवारनि खे फॉर्म 45 फराम न करण जो इल्ज़ाम। पीपुल्स पार्टी जे सेक्रेटरी जनरल नेहर बुखारी चयो आहे त पीपुल्स पार्टी जे उमेदवारनि खे फॉर्म 45 फराम न पियो कयो वञे। पुरमुन माहौल में नतीजा तकरारी बणाए माहौल ख़राब न कयो वञे। कमर ज़मान पारां पीपुल्स पार्टी उमेदवारनि खे फॉर्म 45 खां सवाइ पोलिंग स्टेशन न छॾण जो मशवरो। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां आज़ाद कश्मीर जी सूरतहाल ते गणतीअ जो इज़हार। बिलावल भुट्टो जी सदारत हेठि पीपुल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर जे पार्लियामानी पार्टीअ जो अहम इजलास, आज़ाद कश्मीर जे सियासी सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो वियो। बिलावल भुट्टो चयो त पीपुल्स पार्टी सदाई कश्मीरनि जे मसलनि जे हल खे तरजीह ॾिनी आहे। वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कंदुसि, मसलनि जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए कढियो वेंदो। PP आज़ाद कश्मीर जी पार्लियामानी मेम्बर्स आज़ाद कश्मीर जी सूरतहाल बाबति तजवीज़ूं बि पेश कयूं आहिनि। पाबंदी मणियल तंज़ीम जे 9 जून वारे एहतजाज जी सॾु सबब आज़ाद कश्मीर में मामूल जी ज़िंदगी मुतासिर। एहतजाज जे सॾु खे ॾिसंदे सिक्योरिटी हाई अलर्ट कई वई। आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ जो चवण आहे त हाणे बि अवामी एक्शन कमेटीअ सां ॻाल्हियुनि ज़रिए रस्तो कढणु घुर्जे, पर कानून हथ में खयो वियो त रियासत कानून मूजिब मुंहुं ॾींदी। आज़ाद कश्मीर जे सुप्रीम कोर्ट महाजरनि जी सीटनि ते हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार ॾेई छॾियो। सुप्रीम कोर्ट राय ॾिनी त 12 महाजर सीटूं आर्टिकल 22A तहत आइनी तहफ़ुज़ रखनि थियूं, इंतज़ामी फैसलनि सां तब्दील नथो करे सघिजे। सीटनि में तब्दीली लाइ आर्टिकल 33A तहत आइनी तरमीम आणणी पवंदी। महाजर सीटनि जो तारीख़ी बुनियाद 1960, 1964, 1970 ईस्वी जी कानून सां जुड़ियल आहे। सदर आज़ाद कश्मीर हुकूमती सलाह ते आइन जी आर्टिकल 46A तहत सदारती रेफरेंस दाख़िल कयो हो। हुकूमत ऐं पीपुल्स पार्टी विच में बजेट बाबति मुशावरत अॼु थियण जो इम्कान। सदर आसिफ ज़रदारी जी अॻवाणीअ में पीपुल्स पार्टीअ जो वफ़द हुकूमती वफ़द सां मुलाक़ात कंदो। हिन खां अॻु सदर आसिफ ज़रदारी पीपुल्स पार्टी जी ॻाल्हियुनि वारी कमेटीअ सां मुलाक़ात कंदो। मुलाक़ात में PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वॾो वज़ीर सैद मुराद अली शाह, शेरी रहमान ऐं नवीद कमर शिरकत कंदा। पाकिस्तान जो खिते में अमुन लाइ कोशिशूं जारी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी जी तहरान में ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राख़्ची सां मुलाक़ात। ईरानी ख़बर एजेंसी मूजिबि मोहसिन नकवी अब्बास राख़्ची खे सुप्रीम लीडर लाइ ख़सूसी ख़त ॾिनो। मोहसिन नकवी गुज़िरियल ॾींहुं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल जो पैगाम खणी तहरान पहुतो हो। कोटिया में तेज़ाब हारे ज़ख़्मी थियल लेडी डॉक्टर महानूर कराची जी ख़ानगी इस्पताल मुंतकिल। तेज़ाब हमले में ज़ख़्मी थियल लेडी डॉक्टर महानूर खे एयर एम्बुलेंस ज़रिए कराची आंदो वियो हो। इस्पताल इंतिज़ामिया जो चवण आहे त डॉक्टर महानूर जी हालत ख़तरे खां ॿाहिरि आहे, संदसि अखियूं मुतासिर थियूं आहिनि। खुशकिस्मती से लेडी डॉक्टर मानूर की अखियन जो नूर महफूज है। डॉक्टर मानूर से तेजाब हमलो कंदड़ जवाबदार अब्दुल रजाक पान भी जख्मी थी पे हो। मौसमियात खाते सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकन लाए हीट वेव अलर्ट जारी कर छो। सिंध के कुछ जिलों में मौसम अज का 12 जून तधिक गर्म होंगी। मौसमियात खाते चौहत सखर शिकारपुर कंबर शादादकोट जैकबाबाद लाड़कानो दादू नवाबशाह घोटकी खैरपुर नौशरु फिरोज जो पारो मामूल का 6 सेंटीग्रेड तुम्हें मुख्तलिफ इलाकन में रात के वक्त में गर्मी बरकरार रही। शहरी गर्मी में सिंध में जरई पानी की खोट 57% तक पहुंची वही। कोटली बैराज से 57, सखर बैराज से 36 ए गुडू बैराज से 34 रिकॉर्ड। पानी की खोट सब बैराजेज में निकलंदड़ वाहन के भी पंजे हिस्से का घट पानी मिलन लगो। डाउनस्ट्रीम में पानी छोड़ मुकम्मल तौर से बंद। सेंट्रल जेल लाड़काने में कैद अगुणे सूबाई सलाहकार इस्माइल डायरी की तबियत खराब। घंटी जोगी हालत में अस्पताल मुंतकिल। इस्माइल डायरी के साह की तकलीफ सबब ट्रामा सेंट्रल लाड़काने के आईसीयू में दाखिल किया वो है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पब्लिक हेल्थ खाते के कचल मुलाजमन मुतालबन की मेहनत। खैरपुर शादादकोट कंदकोट और मोहम्मद खान नौशरु फिरोज ए बेन शहरों में मुजाहरा। मुलाजमन का चवण है 7 साल का इदारे में कम कर रहा आयु अजा ती पक् नो वे सरकार तरफा ऐलानियल पघारू भी न थी मिलन पक्को करे सरकार तरफा ऐलानियल पघारू जारी पी वन। काजी अहमद वेझो जाल ए मुड़स के कतल जो जरगो इल्जाम हेठ आयल दौर से 1,96,00,000 रूपया दंड मुकरर। गोठ अलह डितो कल्याल में 1 साल अग कतल थियल मुर्तजा कल्याल ए संद जाल मुनीरा के खून जो जरगो रांझू कल्याल दौर से बिटे कतल जो 1,96,00,000 रूपया दंड रखो वो। जरगो जीलानी हाउस से आसिफ शाह जीलानी ए अली नवाज चांडियो की सरपंची में थोड़ा।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है, कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6 सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर था भी डाढ़ा मियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: या ही सिंध जी दिल जी मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो
2: के हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: शादी का इवेंट और स्टेज आता तैयार क्यों? चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध दिल जी मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू सुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: ले कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का सिंध की हो तो आवाज

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो आज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुझी सघंदा। नेब मलीर में हजारे एकड़ जमीन के गैर कानूनी अलाटमेंट की जांच शुरू कर छड़ी। रेवेन्यू खाते का रिकॉर्ड तलब। सिंध में मैट्रिक जा नतीजा 10 जुलाई ऐं इंटर जा 31 जुलाई ताईं जारी करण जो फैसलो। सूबाई वजीर इस्माइल राहो जी सदारत हेठ तालीमी बोर्ड जो इजलास। 1 करोड़ खां वधीक इनाम रखियल बदनाम धाड़ेल। मेलो तेगाणी सूधो 60 ॾिहारी पुलिस वट पेश। शिकारपुर पुलिस लाइन में सिलेंडर पॉलिसी तहत 60 खां वधीक कचे जे ॾिहारिन हथियार फिटा कया। सिंध जे जेलन में गुंजाइश खां वधीक कैदी वाड़ियल। 14,128 जे गुंजाइश अंग 26,959 ते पहुची वियो। अज खां सजे मुल्क में सख्त गर्मी, हीट वेव जो खतरो। मौसमियात खाते आगाह करे छडियो। सिंध में पानी खोट 40% थी वही। वाहन के फराहमी में 34% तई कटौती। स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सघंदा। सालियानी बजट अवामी मुफाद। नेब कराची मलीर जिले में हजारे एकड़ सरकारी जमीन के गैरकानूनी अलाटमेंट वाले मामले की जांच शुरू कर छी है। अगूणे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली शाह, बासर शख्स ए जी मजीद खालिद, यूसुफ जई, अमाद दीन चाचड़ समेत बेन के खिलाफ जांच शुरू कदे रेवेन्यू खाते का रिकॉर्ड तलब कर वरतो है। उन हवाले से वरतल जान मुताबिक कराची के जिले मलीर के वे पैमाने से गैरकानूनी जमीन की अलाटमेंट कई वही है। रेवेन्यू खाते तोड़े लैंड यूटिलाइजेशन खाते जहा कामोरा मुलविस उन्होंने खिलाफ का भी असरायती कार्रवाई वे अरसे का ना थी सकी। नेब कराची पारा मलीर जिले में हजारे एकड़ सरकारी जमीन के गैरकानूनी अलाटमेंट कर जाली एंट्रीज रखने वाले मामले की जांच शुरू कर छी है। उन सिलसिले में रेवेन्यू खाते के इख्तियार के खत लिखो वो बुधायो वो है मलीर के तालके मुराद मेमण में गैरकानूनी जमीन की अलाटमेंट वाले मामले की जांच शुरू कई वही है। तालके मुराद मेमण के मुख्तियारकार के खत लिखी जानायो वो है तो बुधायो वे 117 एंट्रीज कंजे नालन से उन जमीन की अलाटमेंट कदें थी, कड़े आफिसर उन जमीन की अलाटमेंट कई है, उहा जमीन कड़े माण्हुनि जे नाले ते आहे, उन जमीन की हाण स्टेटस है। समूरो गुरबल रिकॉर्ड तलब कयो वियो आहे। हजारे एकड़ सरकारी जमीन की गैरकानूनी अलाटमेंट वाली लिस्ट भी रेवेन्यू खाते के मोकली वही। उन मुताबिक मलीर जिले के दह टोड़ में 323 एकड़ अतहर अली नाले शख्स के अलाट करण उन जे नाले ते एंट्री रखण वाले मामले जो रिकॉर्ड डिठो वियो। सिंधु हुकूमत मैट्रिक इंटरमीडिएट के नतीजन के तारीखों जो ऐलान कर छो है। यूनिवर्सिटीज तालीमी बोर्ड के सूबाई वजीर इस्माइल राहो की सदारत हेठ सभी तालीमी बोर्डन जो इजलास थो जै दौरान सिंध में मैट्रिक इंटरमीडिएट के सालियानी इम्तिहान जो जायजो वरतो वो। इस्माइल राहू चो तो सिंध के सभी डिवीजनों में मैट्रिक जहा नतीजा 10 जुलाई तई इंटरमीडिएट जा नतीजा 31 जुलाई तई जारी कया वेंदा। नतीजा मुकर वक्त ते जारी कया वन जी शागिर्दन के वक्त सुर दाखिला में सहूलत मिले। इन तालीमी बोर्डन में शफाफियत मेरिट इम्तिहानी निजाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन सहकार फराहम किया वो। इजलास दौरान वजीर के दिनल ब्रीफिंग में बुधाया वो तालीमी बोर्ड 9 ऐं 11 जमायत जहा नतीजा 31 अगस्त तई जारी कर छी। सिंधु हुकूमत के सिलेंडर पॉलिसी तहत कचे के 102 केसन में घुर्बल 1 करोड़ रुपया इनामी याफ्ता बदनाम ॾिहारी बेलो तेगाणी समेत 60 खां वधीक घुर्बल खतरनाक ॾिहारिन पुलिस लाइन शिकारपुर में हथियार फिटा कर कानून आडो पेश थिया। उन मौके से SSP शिकारपुर कलीम मलक प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे सिलेंडर कंदर ॾिहारिन के मीडिया आडो पेश कयो सिलेंडर पॉलिसी बाबत तफसीली ब्रीफिंग दिनी। SSP कलीम मलक चयो त सिलेंडर कंदड़ ॾिहारिन में 1 करोड़ रुपया इनाम याफ्ता बिलो तेगाणी, 50 लख रुपया इनाम याफ्ता अलीगुल तेगाणी, मंजूर जाफरी अलहियार नंदवाणी, 40 लख रुपया इनाम याफ्ता अब्दुरहमान तेगाणी, 30 लख रुपया इनाम याफ्ता मोहरम तेगाणी, जॾहिं त 20 लख रुपया इनाम याफ्ता वहीद सब्जोई, मीर शर, सुल्तान बिजाराणी, बशीर भयो ॿिया केतिराई घुर्बल ॾिहारी शामिल आहिनि जिन ख़िलाफ़ कतुल, अगवा, फुर, धाड़ा, पुलिस मुकाबलन बियन संगीन नोयत के ॾोहन जा केस दाखिल आहिनि। इन चयो त सिंधु हुकूमत पारां शुरू कयल सरेंडर पॉलिसी जा मुस्बत नतीजा साम्हूं अची रहिया आहिनि। मुख़्तलिफ़ केसनि में घुर्बल ॾिहारिन जे कानून जो आॾो पेश थियण ज़िले में अमन अमान जी सूरतहाल बहितर बनाइण जे लाइ हिकु अहम क़दम आहे। संस ख़िलाफ़ दाख़िल केसनि मूजिबि कानूनी कार्रवाई जारी रहंदी खेनि अदालत आॾो पेश कयो वेंदो।
दोहरनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी रखियूं वेंदियूं। हुन ॿुधायो त कुझु कबीलाई तकरारनि सबबि मुख़्तलिफ़ ज़ातियुनि सां ताल्लुक़ रखंदड़ कुझु घुर्बल दोहारी अञा ताईं सरेंडर न करे सघिया आहिनि, जॾहिं त ईंदड़ फेज़ टे में वधीक दोहारियुनि जे हथियार फिटा कया वेंदा। सिंध जे जेलनि में गुंजाइश खां वधीक 12,700 कैदी वाड़ियल, 14,128 जी गुंजाइश अंग 26,959 ते पहुतो। रिपोर्ट मूजिब कराची जे सेंट्रल जेल में 2400 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 7,985 कैदी वाड़ियल आहिनि। सेंट्रल जेल हैदराबाद में 1527 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 3009 कैदी वाड़ियल आहिनि। सेंट्रल जेल लाड़काणे में 650 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 963 कैदी वाड़ियल आहिनि। वुमेन जेल सखर में 20 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 75 औरतूं कैद आहिनि। डिस्ट्रिक्ट मलीर में 2200 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 5,644 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल नारा हैदराबाद में 300 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, उते 547 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल शहीद बेनिंदराबाद में 100 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 352 कैदी वाड़ियल आहिनि। लाड़काणे डिस्ट्रिक्ट जेल में 150 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 449 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल दादूअ में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, उते 417 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल बदीन में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, ऐं उते 319 कैदी मौजूद आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल शिकारपुर में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, त उते 440 कैदी मौजूद आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल नौशहर फिरोज में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, त उते 546 कैदी वाड़ियल आहिनि। मजमूई तौर ते सिंध जे 23 जेलनि में 14,128 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 26,959 कैदी वाड़ियल आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ जेलनि में 438 औरतूं ऐं 312 ॿार कैदी आहिनि, जंहिं मां 68 औरतुनि ते ॾोह साबित थी चुको आहे। हिकु औरत खे मौत जी सज़ा मिलियल आहे, जॾहिं त 368 औरतुनि जा केस अदालत में हलंदड़ आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ जेलनि में कैद 312 ॿार कैदियुनि मां 8 ते ॾोह साबित थी चुको आहे, जॾहिं त 303 कैदियुनि जा केस अदालत में हलंदड़ आहिनि। सिंध में पाणी खोट 40% खां वधीक थी वई आहे। ईंदड़ 10 ॾींहनि में 50% खां वधण जा इम्कान यकीनी बणिजी विया आहिनि। वावडा ऐं अरसा पारां डेमनि मां पाणी भरण जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। काल्ह मुल्क जा पाणी ज़खीरा 4 मिलियन एकड़ फुट ताईं कढिया विया। सिंध जे बैराजनि मां गुडू बैराज ते पाणीअ जी खोट 28%, सखर बैराज ते 38% ऐं कोटड़ी बैराज वटि 57% वधी वई आहे। सखर बैराज वटां कीर्थर केनाल में 51, राइस केनाल में 39, दादू केनाल में 83, नारा केनाल में 17, खैरपुर वेस्ट 35, रोहिड़ी केनाल 34 ऐं खैरपुर वेस्ट केनाल में 44% खोट थी वई आहे। कोटड़ी बैराज वटि पाणी आमद 11,645 क्यूसिक आहे ऐं घुर्ज 26,900 आहे। कोटड़ीअ वटां कलेरी फीडर में 52, अक्रमवाह में 58, ओल्ड फुलेलीअ में 49 ऐं न्यू फुलेलीअ में 63% खोट थी वई आहे। गुडू बैराज ते बीएस फीडर में 49, पट फीडर में 14 ऐं घोटकी फीडर में 12% पाणी घुर्ज खां घटि आहे। सीए जी केनाल मां कट वधाए 16,500 क्यूसिक कई वई आहे ऐं HTP केनाल वसीले बि तौंसा बैराज मां 11,894 क्यूसिक पाणी खयो पियो वञे। काल्ह मंगला डेम में पाणी आमद 43,102 क्यूसिक रिकॉर्ड कई वई ऐं कट 39,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कई वई। तरबेला डेम में पाणी आमद 1,28,400 क्यूसिक ऐं हेठां वहिकिरो 1,10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। काल्ह गुडू बैराज जो मथां वहिकिरो 75,002, सखर बैराज जो मथां वहिकिरो 50,620 ऐं कोटड़ी बैराज जो मथां वहिकिरो 11,645 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। अॼु खां सॼे मुल्क में सख़्त गर्मी हीट वेव जो ख़तरो मौसमियात खाते आगाह करे छॾियो आहे। 7 जून खां 12 जून ताईं गर्मी जी लहर जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते अलर्ट जारी कयो आहे। अलर्ट मूजिबि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, चहलम, गुजरात, सियालकोट 8 जून खां 11 जून ताईं गर्मी जी लपेट में रहंदा। नारेवाल, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, झंग, टोबा, टेकसिंग, सरगोधा, मियांवाली, खुशा, बखर में भी हीट वेव जो इम्कान आहे। अलर्ट मूजिब लैया, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, ओकाड़ा, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान, मुज़फ्फरगढ़, राजनपुर पिण मुतासिर थींदा। मौसमियात खाते मूजिब गर्मी पद मामूल खां 4 खां 6 डिग्री सेंटीग्रेड वधीक रहण जो इम्कान आहे ऐं 7 खां 12 जून ताईं गर्मी पद 44 खां 48 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो। 8 खां 12 जून ताईं कराची में मौसम सख़्त गर्म रहण जो इम्कान आहे ऐं गर्मी पद 40 खां 43 डिग्री सेंटीग्रेड जे विच में रहंदो। 12 जून ताईं सिंध ऐं बलोचिस्तान जे कुझु ज़िलनि में गर्मी पद 48 खां 51 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो।
जॾहिं त ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मैदानी इलाइक़नि में गर्मी पद 41 खां 46 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं वञी सघे थो। मौसमियात खाते शहरनि खे अपील कई आहे त गर्मी तेज़ हुजण सबबि पंहिंजे ॿारनि जो ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। पेशवा आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु जे सरज़मीन खां वठी जबलनि जे माथिरियुनि ताईं जॾहिं बि बजट जी मौसम अचे थी, तॾहिं रुगो वज़ीर जा दफ़्तर या इक़्तदार जा ऐवान ई जाॻी नथा पवनि, पर हिकु मज़दूर जी चुल्ह, हिकु उस्ताद जी उमेद, हिकु क्लार्क जो खीसो, हिकु पेंशनर जो थकल निगाह ऐं हिकु ग़रीब माउ जो रधणो बि कंहिं अणॾिठल इंतज़ार में बीह रहंदो आहे। हर साल वांगुरु हिन साल बि क़ौम जे दिलि में उहो ई सवाल धड़की रहियो आहे त छा ईंदड़ बजट आवाम ऐं मुलाज़मनि जे लाइ आसानीअ जो पैगाम आणींदी या वरी सब्र जे सलेब ते लटकाइण वारो नओं फरमान साबित थींदो। पाकिस्तान जी मौजूदा इक़्तिसादी हालति कंहिं अहिड़े मुसाफ़िर वांगुरु आहे जेको कर्ज़नि जे बैठक में बीठो रहियो आहे। हिकु हथ में उमेद ऐं ॿी हथ में कर्ज़नि जी ज़ंजीर। मुल्क अञा बि आलमी कर्ज़ ॾींदड़ इदारनि जे निगरानीअ हेठि आहे। हुकूमत खे सख़्त माली हदबंदियुनि अंदरि रहंदे बजट ठाहिणी पइजी रही आहे, जिते ख़र्च घटाइण, टैक्स वधाइण ऐं ख़सारो क़ाबू करणु बुनियादी शर्त बणियल आहे। हाणे सवाल उहो थो उभरे त अहिड़े माहौल में अवामी मुफ़ाद वारी बजट केतिरी हद ताईं मुमकिन आहे। मुशाहिदे मूजिबि पाकिस्तान जे सियासी तारीख़ ॿुधाए थी त चूंडुनि खां परे बीठल हुकूमतूं घणो करे अहिड़ियूं बजटूं आणींदियूं आहिनि जिन में अवामी रिलीफ खां वधीक माली नज़्मो ज़ब्त खे तरजीह ॾिनी वेंदी आहे। सरकारी मुलाज़मनि बाबति सूरतहाल वधीक पेचीदा ॾिसण में अचे थी। हिकु पासे हुकूमती हल्क़नि में अहिड़ियूं तजवीज़ूं ज़ेरे गौर आहिनि जिन में 5% खां 10% ताईं एडहाक रिलीफ पघारुनि में मामूली वाध या कुझु अलाउंस में तब्दीली शामिल आहे, त ॿिए पासे अहिड़ियूं रिपोर्टूं बि आहिनि जिन मूजिबि हुकूमत पघारुनि में वाध बदिरां टैक्स में कुझु रिलीफ ॾिए मुलाज़मनि खे मुतमिन करण जो रस्तो इख़्तियार करे सघे थी। पर हिते हिकु तलख हक़ीक़त बि लिकियलु आहे। जेकॾहिं पघार सिर्फ़ 5 या 7% वधंदी, जॾहिं मार्केट में महांगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल, तालीम ऐं दवाउनि जा अघ वधीक तेज़ीअ सां वधंदा रहंदा, त अहिड़े वाध मुलाज़मनि जे लाइ रिलीफ न पर अंगनि जो फरेब महसूस थींदी। तारीख़ शायदि आहे त जॾहिं बि हुकूमतुनि वटि माली वसीलनि जी खोट थी, तॾहिं आम माण्हूअ जे खीसे ते ख़ामोश टैक्स विधो वियो। पेट्रोल महांगो थियो, ट्रांसपोर्ट महांगी थी, भाॼी, अटो, खंड, दवाऊं ऐं तालीम सभु कुझु अवाम जे वस खां परे थींदो वियो। अॼु बि उहो ख़दशो मौजूदु आहे त जेकॾहिं आलमी इदारनि जूं शर्तूं सख़्त रहियूं त हुकूमत रिलीफ बदिरां रेवन्यू गॾु करण खे तरजीह ॾेई सघे थी। ज़माने जे तलख तजुर्बे मां एतिरो ज़रूर चई सघिजे थो त पाकिस्तान जूं बजटूं घणो करे उमेद ऐं मायूसीअ जे विच वारी सरह ते जनम वठंदियूं आहिनि। मौजूदा निशानियुनि खे ॾिसंदे ईअं लॻे थो त हीअ बजट शायदि मुकमल तौर अवामी या मुलाज़िम दोस्त न हुजे, पर हुकूमत कोशिश कंदी त घटि में घटि एतिरो रिलीफ ज़रूर ॾिए जो नाराज़गीअ जी बाहि वॾे तूफ़ान में तब्दील न थिए। बाक़ी हक़ीक़ी फ़ैसिलो हमेशह वांगुरु बाज़ार, बिजलीअ जे बिल ऐं घर जो रधणो कंदो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो।

0: किया है सिंधी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सघंदा नेब मलीर में हजार एकड़ जमीन के गैर कानूनी अलॉटमेंट की जांच शुरू कर छी रेवन्यू खाते का रिकॉर्ड तलब सिंध में मैट्रिक जा नतीजा 10 जुलाई इंटर जा 31 जुलाई तक जारी करने जो फैसलो सूबाई वजीर इस्माइल राहू की सदारत हेठ तालीमी बोर्ड जो इजलास एक करोड़ खां वधीक इनाम रखल बदनाम धाड़ेल बेलो तेगाणी सूधो 60 डिहारी पुलिस वट पेश शिकारपुर पुलिस लाइन में सिलेंडर पॉलिसी तहत 60 खां वधीक कचे जे डिहारी हथियार फिटा कया सिंध जे जेलन में गुंजाइश खां वधीक कैदी वाड़ियल 14128 जे गुंजाइश अंग 26959 ते पहुची वयो अज खां सजे मुल्क में सख्त गर्मी हीट व्यू जो खतरो मौसमियात खाते आगाह कर छो सिंध में पानी खोट 40 सैकड़ो थी वही वाहन के फराहमी में 34 सैकड़ो तई कटौती स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सकंदा सालियानी बजट अवामी मुफाद नेब कराची मलीर जिले में हजार एकड़ सरकारी जमीन की गैरकानूनी अलॉटमेंट वाले मामले की जांच शुरू कर छी है अगूणे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली शाह बासर शख्स एजी मजीद खालिद यूसुफ जई अमाद दीन चाचड़ समेत बेन के खिलाफ जांच शुरू कदे रेवन्यू खाते का रिकॉर्ड तलब कर वरतो है उन हवाले से वरतल जान मुताबिक कराची के जिले मलीर के वे पैमाने से गैरकानूनी जमीन की अलॉटमेंट कई वही है रेवन्यू खाते तोड़े लैंड यूटिलाइजेशन खाते जहा कामोरा मुलविस उन्होंने खिलाफ का भी असरायती कार्रवाई वे अरसे नेब कराची पारा मलीर जिले में हजार एकड़ सरकारी जमीन के गैरकानूनी अलॉटमेंट कर जाली एंट्रीज रखने वाले मामले की जांच शुरू कर छी है उन सिलसिले में रेवन्यू खाते के इख्तियार खत लिखो वो बुधा वो है मलीर के तहलके मुराद मेमण में गैरकानूनी जमीन की अलॉटमेंट वाले मामले की जांच शुरू कई वही है तहलके मुराद मेमण के मुख्तियारकार के खत लिखी जाना वो है तो बुधा वे 117 एंट्रीज कें नालन से उन जमीन की अलॉटमेंट कदें थी कड़े आफिसर उन जमीन की अलॉटमेंट कई है उमीन कड़े मानू

किनारे ते आहे ऐं हुन ज़मीन जी हाण स्टेटस छा आहे। समूरो घुरबल रिकॉर्ड तलब कयो वियो आहे। हज़ार एकड़ सरकारी ज़मीन जी गैरकानूनी अलाटमेंट वारी लिस्ट बि रेवन्यू खाते खे मोकिली वई। उन जे मुताबिक़ मलिर ज़िले जे दह टोड़ में 323 एकड़ अतहर अली नाले शख़्स खे अलाट करण ऐं उन जे नाले ते एंट्री रखण वारे मामले जो रिकॉर्ड ॾिठो वियो। सिंधु हुकूमत मैट्रिक ऐं इंटरमीडिएट जे नतीजनि जे तारीख़ुनि जो ऐलान करे छॾियो आहे। यूनिवर्सिटीज़ ऐं तालीमी बोर्ड जे सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू जी सदारत हेठि सभिनी तालीमी बोर्डनि जो इजलास थियो, जंहिं दौरान सिंध में मैट्रिक ऐं इंटरमीडिएट जे सालियानी इम्तिहान जो जाइज़ो वरितो वियो। इस्माइल राहू चयो त सिंध जे सभिनी डिवीज़ननि में मैट्रिक जा नतीजा 10 जुलाई ताईं इंटरमीडिएट जा नतीजा 31 जुलाई ताईं जारी कया वेंदा। नतीजा मुक़रर वक़्त ते जारी कया वञनि त जीअं शागिर्दनि खे वक़्त सुर दाख़िला में सहूलियत मिले। हिन वधीक चयो त तालीमी बोर्डनि में शफ़ाफ़ियत, मेरिट ऐं इम्तिहानी निज़ाम जी बहितरीअ जे लाइ हर मुमकिन सहकार फराहम कयो वेंदो। इजलास नतीजा 31 अगस्त ताईं जारी करे छॾींदी। सिंधु हुकूमत जे सरेंडर पॉलिसीअ तहत कचे जे 102 केसनि में घुर्बल 1 करोड़ रुपया इनामी याफ़्ता बदनाम ॾोहारी बेलो तेगाणी समेत 60 खां वधीक घुर्बल ऐं ख़तरनाक ॾोहारियुनि पुलिस लाइन शिकारपुर में हथियार फिटा करे कानून आॾो पेश थिया। उन मौके ते SSP शिकारपुर कलीम मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सरेंडर कंदड़ ॾोहारियुनि खे मीडिया आॾो पेश कयो ऐं सरेंडर पॉलिसी बाबति तफ़सीली ब्रीफिंग ॾिनी। SSP कलीम मलिक चयो त सरेंडर कंदड़ ॾोहारियुनि में 1 करोड़ रुपया इनाम याफ़्ता बिलो तेगाणी, 50 लख रुपया इनामी याफ़्ता अली गुल तेगाणी, मंज़ूर जाफरी ऐं अलहयार नंदवाणी, 40 लख रुपया इनामी याफ़्ता अब्दुल रहमान तेगाणी, 30 लख रुपया इनामी याफ़्ता मोहरम तेगाणी, जॾहिं त 20-20 लख रुपया इनामी याफ़्ता वहीद सब्ज़ोई, मीर शर सुल्तान बिजाराणी, बशीर भयो ऐं ॿिया केतिरा ई घुर्बल ॾोहारी शामिल आहिनि, जिन ख़िलाफ़ क़तुल, अगवा, फुर, धाड़ा, पुलिस मुक़ाबलनि ऐं ॿियनि संगीन नोयत जे ॾोहनि जा केस दाख़िल आहिनि। हिन चयो त सिंधु हुकूमत पारां शुरू कयल सरेंडर पॉलिसीअ जा मुस्बत नतीजा साम्हूं अची रहिया आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ केसनि में घुर्बल ॾोहारियुनि जे कानून जो आॾो पेश थियण ज़िले में अमन अमान जी सूरतहाल बहितर बनाइण जे लाइ हिकु अहम क़दम आहे। संस ख़िलाफ़ दाख़िल केसनि मूजिबि कानूनी कार्रवाई जारी रहंदी ऐं खेनि अदालत आॾो पेश कयो वेंदो। ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी रखियूं वेंदियूं। हुन ॿुधायो त कुझु कबीलाई तकरारनि सबबि मुख़्तलिफ़ ज़ातियुनि सां तालुक़ रखंदड़ कुझु घुर्बल ॾोहारी अञा ताईं सरेंडर न करे सघिया आहिनि, जॾहिं त ईंदड़ फेज़ 3 में वधीक ॾोहारियुनि जे हथियार फिटा कया वेंदा। सिंध जे जेलनि में गुंजाइश खां वधीक 12,700 कैदी वाड़ियल, 14,128 जी गुंजाइश अंग 26,959 ते पहुतो। रिपोर्ट मूजिब कराची जी सेंट्रल जेल में 2400 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 7,985 कैदी वाड़ियल आहिनि। सेंट्रल जेल हैदराबाद में 1527 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 3009 कैदी वाड़ियल आहिनि। सेंट्रल जेल लाड़काणे में 650 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 963 कैदी वाड़ियल आहिनि। वुमेन जेल सखर में 20 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 75 औरतूं कैद आहिनि। डिस्ट्रिक्ट मलीर में 2200 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 5,644 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल नारा हैदराबाद में 300 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, उते 547 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल शहीद बेनेदराबाद में 100 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 352 कैदी वाड़ियल आहिनि। लाड़काणे डिस्ट्रिक्ट जेल में 150 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 449 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल दादूअ में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, उते 417 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल बदीन में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे ऐं उते 319 कैदी मौजूद आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल शिकारपुर में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे त उते 440 कैदी मौजूद आहिनि। जॾहिं डिस्ट्रिक्ट जेल नौशहर फिरोज में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे त उते 546 कैदी वाड़ियल आहिनि। मजमूई तौर ते सिंध जे 23 जेलनि में 14,128 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 26,959 कैदी वाड़ियल आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ जेलनि में 438 औरतूं ऐं 312 कैदी आहिनि, जंहिं मां 88 औरतुनि ते ॾोह साबित थी चुको आहे। हिकु औरत खे मौत जी सज़ा मिलियल आहे, जॾहिं त 368 औरतुनि जा केस अदालत में हलंदड़ आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ जेलनि में कैद 312 कैदियुनि मां 8 ते ॾोह साबित थी चुको आहे, जॾहिं त 303 कैदियुनि जा केस अदालत में हलंदड़ आहिनि। सिंध में पाणी खोट 40% खां वधीक थी वई आहे। ईंदड़ 10 ॾींहनि में 50% खां वधण जा इम्कान यकीनी बणिजी विया आहिनि। वावडा ऐं अरसा पारां डेमनि मां पाणी भरण जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। काल्ह मुल्क जा पाणी ज़खीरा 4 मिलियन एकड़ फुट ताईं कढिया विया। सिंध जे बैराजनि मां

बेराज ते पाणी जी खोट 28 सैकड़ो, सखर बेराज ते 38 सैकड़ो ए कोटड़ी बेराज वट 57 सैकड़ो वधी वई आहे। सखर बेराज वटां कीर्थर केनाल में 51, राइस केनाल में 39, दादू केनाल में 83, नारा केनाल में 17, खैरपुर लिफ्ट 35, रोहिड़ी केनाल 34 ए खैरपुर वेस्ट केनाल में 44 सैकड़ो खोट थी वई आहे। कोटड़ी बेराज वट पाणी आमद 11,645 क्यूसिक आहे ए घुर्ज 26,900 आहे। कोटड़ी वटां कलेरी फीडर में 52, अक्रमवाह में 58, ओल्ड फुलेली में 49 ए न्यू फुलेली में 63 सैकड़ो खोट थी वई आहे। गुडू बेराज ते बीएस फीडर में 49, पट फीडर में 14 ए घोटकी फीडर में 12 सैकड़ो पाणी घुर्ज खां घट आहे। सीएजी केनाल मां कट वधाए 16,500 क्यूसिक कई वई आहे। एचटीपी केनाल वसीले बि तौंसा बेराज मां 11,894 क्यूसिक पाणी खयो पियो वञे। काल मंगला डेम में पाणी आमद 43,102 क्यूसिक रिकॉर्ड कई वई ऐं कट 39,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कई वई। तरबेला डेम में पाणी आमद 1,28,400 क्यूसिक ऐं हेठां वहिकिरो 1,10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। काल गुडू बेराज जो मथां वहिकिरो 75,002, सखर बेराज जो मथाउं वहिकिरो 50,620 ऐं कोटड़ी बेराज जो मथाउं वहिकिरो 11,645 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। अॼु खां सॼे मुल्क में सख़्त गर्मी हीट वेव जो ख़तरो मौसमियात खाते आगाह करे छॾियो आहे। 7 जून खां 12 जून ताईं गर्मी जी लहर जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते अलर्ट जारी कयो आहे। अलर्ट मूजिबि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, चहलम, गुजरात, सियालकोट 8 जून खां 11 जून ताईं गर्मी जी लपेट में रहंदा। नारेवाल, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, झंग, टोबा, टेकसिंग, सरगोधा, मियांवाली, खुशा, बखर में बि हीट वेव जो इम्कान आहे। अलर्ट मूजिबि लैया, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, ओकाड़ा, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर पिण मुतासिर थींदा। मौसमियात खाते मूजिबि गर्मी पद मामूल खां 4-6 डिग्री सेंटीग्रेड वधीक रहण जो इम्कान आहे। 7-12 जून ताईं गर्मी पद 44-48 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो। 8-12 जून ताईं कराची में मौसम सख़्त गर्म रहण जो इम्कान आहे ऐं गर्मी पद 40-43 डिग्री सेंटीग्रेड जे विच में रहंदो। 12 जून ताईं सिंध ऐं बलोचिस्तान जे कुझु ज़िलनि में गर्मी पद 48-51 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो, जॾहिं त ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मैदानी इलाइक़नि में गर्मी पद 41-46 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं वञी सघे थो। मौसमियात खाते शहरनि खे अपील कई आहे त गर्मी तेज़ हुजण सबबि पंहिंजे ॿारनि जो ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। पेशवा आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु जे सरज़मीन खां वठी जबलनि जे माथिरियुनि ताईं जॾहिं बि बजट जी मौसम अचे थी, तॾहिं रुगो वज़ीर जा दफ़्तर या इक़्तदार जा ऐवान ई जाॻी नथा पवनि, पर हिकु मज़दूर जी चुल्ह, हिकु उस्ताद जी उमेद, हिकु क्लार्क जो खीसो, हिकु पेंशनर जो थकल निगाह ऐं हिकु ग़रीब माउ जो रधणो बि कंहिं अणॾिठल इंतज़ार में बीह रहंदो आहे। हर साल वांगुरु हिन साल बि क़ौम जे दिलि में उहो ई सवाल धड़की रहियो आहे त छा ईंदड़ बजट आवाम ऐं मुलाज़मनि जे लाइ आसानीअ जो पैगाम आणींदी या वरी सब्र जे सलेब ते लटकाइण वारो नओं फरमान साबित थींदो। पाकिस्तान जी मौजूदा इक़्तसादी हालति कंहिं अहिड़े मुसाफ़िर वांगुरु आहे जेको कर्ज़नि जे बैठक में बीठो रहियो आहे। हिकु हथ में उमेद ऐं ॿी हथ में कर्ज़नि जी ज़ंजीर। मुल्क अञा बि आलमी कर्ज़ ॾींदड़ इदारनि जे निगरानीअ हेठि आहे। हुकूमत खे सख़्त माली हदबंदियुनि अंदरि रहंदे बजट ठाहिणी पइजी रही आहे, जिते ख़र्च घटाइण, टैक्स वधाइण ऐं ख़सारो क़ाबू करणु बुनियादी शर्त बणियल आहे। हाणे सवाल उहो थो उभरे त अहिड़े माहौल में अवामी मुफ़ाद वारी बजट केतिरी हद ताईं मुमकिन आहे। मुशाहिदे मूजिबि पाकिस्तान जे सियासी तारीख़ ॿुधाए थी त चूंडुनि खां परे बीठल हुकूमतूं घणो करे अहिड़ियूं बजटूं आणींदियूं आहिनि जिन में अवामी रिलीफ खां वधीक माली नज़्मो ज़ब्त खे तरजीह ॾिनी वेंदी आहे। सरकारी मुलाज़मनि बाबति सूरतहाल वधीक पेचीदा ॾिसण में अचे थी। हिकु पासे हुकूमती हल्क़नि में अहिड़ियूं तजवीज़ूं ज़ेरे गौर आहिनि जिन में 5-10% ताईं एडहाक रिलीफ पघारुनि में मामूली वाध या कुझु अलाउंस में तब्दीली शामिल आहे, त ॿिए पासे अहिड़ियूं रिपोर्टूं बि आहिनि जिन मूजिबि हुकूमत पघारुनि में वाध बदिरां टैक्स में कुझु रिलीफ ॾिए मुलाज़मनि खे मुतमिन करण जो रस्तो इख़्तियार करे सघे थी। पर हिते हिकु तलख हक़ीक़त बि लिकियलु आहे। जेकॾहिं पघार सिर्फ़ 5-7% वधंदी, जॾहिं मार्केट में महांगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल, तालीम ऐं दवाउनि जा अघ वधीक तेज़ीअ सां वधंदा रहंदा, त अहिड़े वाध मुलाज़मनि जे लाइ रिलीफ न पर अंगनि जो फरेब महसूस थींदी। तारीख़ शायदि आहे त जॾहिं बि हुकूमतुनि वटि माली वसीलनि जी खोट थी,
तॾहिं आम माण्हूअ जे खीसे ते खामोश टैक्स विधो वियो। पेट्रोल महांगो थियो, ट्रांसपोर्ट महांगी थी, भाॼी, अटो, खंड, दवाऊं ऐं तालीम सभु कुझु आवाम जे वस खां परे थींदो वियो। अॼु बि उहो ख़दशो मौजूदु आहे त जेकॾहिं आलमी इदारनि जूं शर्तूं सख़्त रहियूं त हुकूमत रिलीफ बदिरां रेवन्यू गॾु करण खे तरजीह ॾेई सघे थी। ज़माने जे तलख तजुर्बे मां एतिरो ज़रूर चई सघिजे थो त पाकिस्तान जूं बजटूं घणो करे उमेद ऐं मायूसीअ जे विच वारी सरह ते जनम वठंदियूं आहिनि। मौजूदा निशानियुनि खे ॾिसंदे ईअं लॻे थो त हीअ बजट शायदि मुकमल तौर अवामी या मुलाज़िम दोस्त न हुजे, पर हुकूमत कोशिश कंदी त घटि में घटि एतिरो रिलीफ ज़रूर ॾिए जो नाराज़गीअ जी बाहि वॾे तूफ़ान में तब्दील न थिए। बाक़ी हक़ीक़ी फ़ैसिलो हमेशह वांगुरु बाज़ार, बिजलीअ जे बिल ऐं घर जो रधणो कंदो।

0: इहो हो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंड अप ॿिए आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।
1: Quetta and Chitral. It's hot. You're listening to the Hot FM Network.

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: You're listening to the Hot FM Network.

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 सिंध की।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा नेब मलीर में हजारे एकड़ जमीन जे गैर कानूनी अलॉटमेंट जी जांच शुरू करे छड़ी। रेवेन्यू खाते खां रिकॉर्ड तलब। सिंध में मैट्रिक जा नतीजा 10 जुलाई ऐं इंटर जा 31 जुलाई ताईं जारी करण जो फैसलो। सूबाई वज़ीर इस्माइल राहो जी सदारत हेठ तालीमी बोर्ड जो इजलास। 1 करोड़ खां वधीक इनाम रखियल बदनाम धाड़ेल। मेलो तेगाणी असूदो 60 ॾिहारी पुलिस वटि पेश। शिकारपुर पुलिस लाइन में सिलेंडर पॉलिसी तहत 60 खां वधीक कचे जे ॾिहारे हथियार फिटा कया। सिंध जे जेलनि में गुंजाइश खां वधीक कैदी वाड़ियल। 14,128 जे गुंजाइश अंग 26,959 ते पहुची वियो। अॼु खां सॼे मुल्क में सख़्त गर्मी, हीट वेव जो ख़तरो। मौसमियात खाते आगाह करे छॾियो। सिंध में पाणी खोट 40% थी वई। वाहन खे फराहमीअ में 34% ताईं कटौती। स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा सालियानी बजट ऐं अवामी मुफ़ाद। नेब कराची मलीर ज़िले में हज़ारे एकड़ सरकारी ज़मीन जे गैर कानूनी अलॉटमेंट वारे मामले जी जांच शुरू करे छॾी आहे। अॻूणे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली शाह, बासर शख्स, एजी मजीद ख़ालिद, यूसुफ ज़ई, अमाद दीन चाचड़ समेत ॿियनि जे ख़िलाफ़ जांच शुरू कंदे रेवेन्यू खाते खां रिकॉर्ड तलब करे वरितो आहे। उन हवाले सां वरितल ॼाण मुताबिक़ कराची जे ज़िले मलीर जे वॾे पैमाने ते गैर कानूनी ज़मीन जी अलॉटमेंट कई वई आहे। रेवेन्यू खाते तोड़े लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जा कामोरा मुलविस आहिनि। उन्हनि ख़िलाफ़ का बि असराइती कार्रवाई वॾे अरसे खां नाहे थी सघी। नेब कराचीअ पारां मलीर ज़िले में हज़ारे एकड़ सरकारी ज़मीन जे गैर कानूनी अलॉटमेंट करण ऐं जाली एंट्रीज़ रखण वारे मामले जी जांच शुरू करे छॾी आहे। उन सिलसिले में रेवेन्यू खाते जे इख़्तियारनि खे ख़त लिखियो वियो आहे ऐं ॿुधायो वियो आहे त मलीर जे तहलके मुराद मेमण में गैर कानूनी ज़मीनुनि जी अलॉटमेंट वारे मामले जी जांच शुरू कई वई आहे। तहलके मुराद मेमण जे मुख्तियारकार खे ख़त लिखी वधीक ॼाणायो वियो आहे त ॿुधायो वञे 117 एंट्रीज़ कंहिंजे नालनि ते आहिनि, उन ज़मीन जी अलॉटमेंट कॾहिं थी, कहिड़नि आफ़ीसरनि उन ज़मीन जी अलॉटमेंट कई आहे ऐं उहा ज़मीन कहिड़नि माण्हुनि जे नाले ते आहे ऐं उन ज़मीन जी हाण स्टेटस छा। लिस्ट बि रेवी निकिरी वई। उन जे मुताबिक़ मलीर ज़िले जे दह टोड़ में 323 एकड़ अतहर अली नाले शख़्स खे अलाट करण ऐं उन जे नाले ते एंट्री रखण वारे मामले जो रिकॉर्ड ॾिठो वियो। सिंधु हुकूमत मैट्रिक ऐं इंटरमीडिएट जे नतीजनि जे तारीख़ुनि जो ऐलान करे छॾियो आहे। यूनिवर्सिटीज़ ऐं तालीमी बोर्ड जे सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू जी सदारत हेठि सभिनी तालीमी बोर्डनि जो इजलास थियो, जंहिं दौरान सिंध में मैट्रिक ऐं इंटरमीडिएट जे सालियानी इम्तिहान जो जाइज़ो वरितो वियो। इस्माइल राहू चयो त सिंध जे सभिनी डिवीज़नुनि में मैट्रिक जा नतीजा 10 जुलाई ताईं ऐं इंटरमीडिएट जा नतीजा 31 जुलाई ताईं जारी कया वेंदा। नतीजा मुक़रर वक़्त ते जारी कया वञनि त जीअं शागिर्दनि खे वक़्त सुर दाख़िला में सहूलियत मिले। हिन वधीक चयो त तालीमी बोर्डनि में शफ़ाफ़ियत, मेरिट ऐं इम्तिहानी निज़ाम जी बहितरीअ जे लाइ हर मुमकिन सहकार फराहम कयो वेंदो। इजलास दौरान वज़ीर खे ॾिनल ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त तालीमी बोर्ड 9 ऐं 11 जमायत जा नतीजा 31 अगस्त ताईं जारी करे छॾींदी। सिंधु हुकूमत जे सिलेंडर पॉलिसीअ तहत कचे जे 102 केसनि में घुर्बल 1 करोड़ रुपया इनामी याफ़्ता बदनाम ॾोहारी बेलो तेगाणी समेत 60 खां वधीक घुर्बल ऐं ख़तरनाक ॾोहारियुनि पुलिस लाइन शिकारपुर में हथियार फिटा करे कानून आॾो पेश।

0: मैदानी इलाइक़नि में गर्मी पद 41 खां 46 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं वञी सघे थो। मौसमियात खाते शहरनि खे अपील कई आहे त गर्मी तेज़ हुजण सबबि पंहिंजे ॿारनि जो ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु जे सरज़मीन खां वठी जबलनि जे माथिरियुनि ताईं जॾहिं बि बजट जी मौसम अचे थी, तॾहिं रुगो वज़ीर जा दफ़्तर या इक़्तदार जा ऐवान ई जाॻी नथा पवनि, पर हिकु मज़दूर जी चुल्ह, हिकु उस्ताद जी उमेद, हिकु क्लार्क जो खीसो, हिकु पेंशनर जो थकल निगाह ऐं हिकु ग़रीब माउ जो रधणो बि कंहिं अणॾिठल इंतज़ार में बीह रहंदो आहे। हर साल वांगुरु हिन साल बि क़ौम जे दिलि में उहो ई सवाल धड़की रहियो आहे त छा ईंदड़ बजट आवाम ऐं मुलाज़मनि जे लाइ आसानीअ जो पैगाम आणींदी या वरी सब्र जे सलेब ते लटकाइण वारो नओं फरमान साबित थींदो। पाकिस्तान जी मौजूदा इक़्तिसादी हालति कंहिं अहिड़े मुसाफ़िर वांगुरु आहे जेको कर्ज़थक में बीठो रहियो आहे। हिकु हथ में उमेद ऐं ॿिए हथ में कर्ज़नि जी ज़ंजीर, मुल्क अञा बि आलमी कर्ज़ ॾींदड़ इदारनि जे निगरानीअ हेठि आहे। हुकूमत खे सख़्त माली हदबंदियुनि अंदरि रहंदे हाणे सवाल उहो थो उभरे त अहिड़े माहौल में अवामी मुफ़ाद वारी बजट केतिरे हद ताईं मुमकिन आहे। मुशाहिदे मूजिब पाकिस्तान जे सियासी तारीख़ ॿुधाए थी त चूंडुनि खां परे बीठल हुकूमतूं घणो करे अहिड़ियूं बजटूं आणींदियूं आहिनि जिन में अवामी रिलीफ़ खां वधीक माली नज़्मो ज़ब्त खे तरजीह ॾिनी वेंदी आहे। सरकारी मुलाज़मनि बाबति सूरतहाल वधीक पेचीदा ॾिसण में अचे थी। हिकु पासे हुकूमती हल्क़नि में अहिड़ियूं तजवीज़ूं ज़ेरे गौर आहिनि जिन में 5% खां 10% ताईं एडहाक रिलीफ पघारुनि में मामूली वाध या कुझु अलाउंस में तब्दीली शामिल आहे, त ॿिए पासे अहिड़ियूं रिपोर्टूं बि आहिनि जिन मूजिब हुकूमत पघारुनि में वाध बदिरां टैक्स में कुझु रिलीफ ॾिए मुलाज़मनि खे मुतमिन करण जो रस्तो इख़्तियार करे सघे थी। पर हिते हिकु तलख हक़ीक़त बि लिकियलु आहे, जेकॾहिं पघार सिर्फ़ 5 या 7% वधंदी, जॾहिं मार्केट में महांगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल, तालीम ऐं दवाउनि जा अघ वधीक तेज़ीअ सां वधंदा रहंदा, त अहिड़े वाध मुलाज़मनि जे लाइ रिलीफ न पर अंगनि जो फरेब महसूस थींदी। तारीख़ शायदि आहे त जॾहिं बि हुकूमतुनि वटि माली वसीलनि जी खोट थी, तॾहिं आम माण्हूअ जे खीसे ते ख़ामोश टैक्स विधो वियो। पेट्रोल महांगो थियो, ट्रांसपोर्ट महांगी थी, भाॼी, अटो, खंड, दवाऊं ऐं तालीम सभु कुझु अवाम जे वस खां परे थींदो वियो। अॼु बि उहो ख़दशो मौजूदु आहे त जेकॾहिं आलमी इदारनि जूं शर्तूं सख़्त रहियूं त हुकूमत रिलीफ बदिरां रेवन्यू गॾु करण खे तरजीह ॾेई सघे थी। ज़माने जे तलख तजुर्बे मां एतिरो ज़रूर चई सघिजे थो त पाकिस्तान जूं बजटूं घणो करे उमेद ऐं मायूसीअ जे विच वारी सरह ते जनम वठंदियूं आहिनि। मौजूदा निशानियुनि खे ॾिसंदे ईअं घटि में घटि एतिरो रिलीफ ज़रूर ॾिए जो नाराज़गीअ जी बाहि वॾे तूफ़ान में तब्दील न थिए। बाक़ी हक़ीक़ी फ़ैसिलो हमेशा वांगुरु बाज़ार, बिजलीअ जे बिल ऐं घर जो रधणो कंदो। हीउ हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंड अप। ॿिए आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज़
2: GFM 91.6।